इंसान भगवान के सामने बहुत भोला बन जाता है और हमेशा यही प्रार्थना करता है कि अनजाने में मैंने अगर कोई गुनाह किए हैं तो ईश्वर उसे माफ कर देना, क्योंकि वही सत्य को जानता है और सत्य ही शिव है।

दोस्तों, कई बार तो हम इतने हताश हो जाते हैं कि ईश्वर की मौजूदगी पर भी संदेह करने लगते हैं। ये तो वही बात हुई कि अगर आप मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान होते हैं।

और हमारी उलझन को वो सुलझा ही देते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। इसके साथ ही आज का भोर सुहाने कार्यक्रम अब संपन्न होता है और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, प्रस्तुति रहेगी सुनीता चौहान की। श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे बालकांड का आज भाग 118। 6:44 से 6:55 तक समाचारों का वक्त बता देते हैं। 6:55 से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और हिंदी में समाचार होंगे 7:00। सात बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 7:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 से 7:30 तक और प्रस्तुति रहेगी सुनीता चौहान की।

7:30 पर आज सवेरे कार्यक्रम होगा और 8 बजे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम, प्रस्तुति रहेगी सुनीता चौहान की। नौ बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील द फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण सुन रहे हैं आप। 6:12 और 3 सेकंड हो चले हैं और शनिवार की सुबह साथ हूं मैं आपके सुनीता।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में भारी भारी खबरें रिले करेंगे। खबरों का इंतज़ार कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंडदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन् अस्ति। उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

0: कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हैं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार, तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा, तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओ,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जे एंड के।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
8: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
7: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें, रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें, पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
8: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नई सुबह का नया पैगाम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज एक बार फिर मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी।
1: तमाम सामीन, मेरा भी खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाएं। सुबह का ये खूबसूरत वक्त अपने अंदर एक खास ताजगी, एक नई उम्मीद और एक नया हौसला ले आता है।
0: बिल्कुल जावेद, जब सूरज की पहली किरणें जमीन को रोशन करती हैं तो यूं महसूस होता है जैसे कुदरत हमें एक और मौका दे रही हो कि हम अपने दिन को मजबूत सोच, अच्छी आदत और खूबसूरत रवैयों के साथ गुजारें।
1: बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सुबह की हवा में जो ताजगी है, परिंदों की चहचहाट में जो पैगाम है और कुदरत के हसीन मनाजिर में जो सुकून है, वो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ मसरूफियात का नाम नहीं बल्कि अपने आप, अपने रिश्तों और अपने इर्द गिर्द की दुनिया से जुड़ने का नाम भी है।
0: जावेद, क्या आज के इस डिजिटल दौर में हम अपने रिश्तों से, अपनी इर्द गिर्द की दुनिया से जुड़े हुए हैं? ये एक सवाल है।
1: सही,
0: शायद ये सवाल हम सबके जहनों में होगा और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज इस नशस्त में जरूर करेंगे।
1: जरूर।
0: फिलहाल जावेद, खूबसूरत मौसम में, पुरकैफ हवा में और इस हसीन माहौल में अपने सुनने वालों के लिए पेश करते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: कर रहे थे कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रहने वाले श्रीनगर डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन बुखारी। थैंक यू वेरी मच
1: थैंक
0: डॉक्टर
1: यू सर, थैंक यू।

0: सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा के दुश्मन वतन पर सफाई सुथरा यकीनी बनाने बापत अर्बन लोकल बॉडीज महकमन 400 खोत ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात करमित महकमन यात्रा रूटन पर मुख्तलिफ जायन जहत 570 बैतुल खुला नसब करमित आकाशवाणी सत कत करान वन अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के डायरेक्टर काजी सरवरन जे यम सफाई कर्मचारी से दोहरात काम करान तमो यात्रन अपील करम जे तम दिन अत सिलसिलस मज पन अथवास।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हम हर वक्त सफाई का एहतमाम करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने खुसूसन जो हमारे ट्रांजिट कैंप आ रहे हैं उसमें काजीगुंड है या वॉलनट फैक्ट्री है, मटन है या उसके अलावा नुनमन बेस कैंप है, उसमें हमने एडिशनल लगभग हमारे पास 400 सफाई मित्राज हैं जो इसके लिए हमने तैनात किए हैं। इसके अलावा हमारे पास 350 बाथरूम्स और टॉयलेट्स बना के रखे हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉलिथीन बैग्स यूज न करें और हमने जो इनको बहुत सारी जगह हमने रिप्लेसमेंट के लिए जूट बैग्स भी इनको दिए हैं। ये पॉलिथीन पे ऑलरेडी उसको बैन किए हैं अपने यूएलबीज में।
1: जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन कर रात श्रीनगर कश्मीर मैराथन के त्रेम शुमारस बापत ऑफिशियल ब्रांडिंग हिंस नकाब कुशाई अत मौक पे वजीर आला सिंधिस मुशीर नासिर असलम वानियस तो जेड बल किस एम एल ए तनवीर सायद के अलावा कई अफसर तौजूद ऑफिशियल ब्रांडिंग हिंस नकाब कुशाई सू अम मैराथन के रजिस्ट्रेशन बापत पोर्टल खुलोमुत रजिस्ट्रेशन हूं अमल सपद अन करीबी शुरू तय पाव चतस जी मैराथन गुस अक्तूबर रितस मज मुनद। खदमत सेंटर एसोसिएशन के एक वफदन को रात जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात वफद के अरकानों दिस खदमत सेंटर हिंदिस काम कारस तो यमो दिस लोकन आयतन थावन इवान खदमतन हिंदिस बारस मज वजीर आला तफसीली जानकारी। भारतीय रेलवे शहत शीत किलोमीटर तवील शुमाली रेलवे के वतन पे हिफाजत यकीनी बनाने तो कामकारस मज बेहतरी अन्न बाप जहत शे करोड़ रुपये हिंद लागत वोल कवाच निज़ाम तैनात कर मंजूरी दिसमुस अमे मनसूबुक मकसद मकामी हिफाजती निज़ाम बेहतर बनाउन तो अहम वतन पे कामकार अंदर बेहतरी अनन रेलवे वजारत वोनमुत कवाच विजन 4.0 ये दिल्ली डिवीजन किस रिवाड़ी दिल्ली तो शकूर बस्ती बठिंडा सेक्शन पे लागू कर निज़ाम खतरनाक वाकत रेल गाड़ियन हिंद तसोदुम के वक्त सिग्नल रुकवित रेलवे हिफाजत टाकार पे हुर्रावन बापत डिजाइन कर आमुत। इजाजत हेन ब्रो बोजू खास खास खबर बे एक फिरे वजीर अजम नरेंद्र मोदी वत रात त्रेन मुल्कन हिंद दौर किस आखिरी पड़ावस पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड वजीर अजम तो भारतीय बरदारी कर तिम खुशावई खर्ज वजीर डॉक्टर एस जयशंकरन कुर मस्कटस मज पन्नस उमैन हम मनसब बदर बिन हम्माद अल बुसैदिया सीत मुलाकात पार्लियामेंट उमूरन हिंद वजराय ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल तो एल मुरगनन हिच इन वाले पार्लियामेंट की मानसून इजलास बापत तैयारियन साम तो रेलवे सेफ्टी तो ऑपरेशनल कारकर्दगी मज हुर कर गर्ज शुमाली रेलवे कन शन हतन शीतन रूट किलोमीटर पे कवाच डिवलपमेंट मंजूरी दिशम अत वो खबरन हूँ बुलेटिन अंद कशरन खबरन हूँ ब्याा बुलेटिन सपद आकाशवाणी श्रीनगर पे 9 बजे तो वहन मिनटन पे नशर अस दी इजाजत खुदा हाफिज।
3: आकाशवाणी का यह श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:55 हुए हैं। समीन आइए आपको तफसील बता दें अब की बात नष्ट होने वाले हमारे बकिया प्रोग्रामों की।

0: में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे आइलैंड, कैटरीज हैं

0: और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजल

0: इसमें आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आवाज है आकाशवाणी श्रीनगर के। प्रोग्राम है पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी। सुबह के 8:15:20 हुए हैं।
4: रशीद, आज जुलाई की 11 तारीख है
3: जी
4: और ये दिन किसी खास दिन के तौर मनाया जाता है। क्या आपको इस बात का इल्म है कि ये दिन किस दिन के तौर मनाया जाता है?
3: अरे जावेद, कैसी बात कर रहे हैं आप। हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आज का दिन यानी 11 जुलाई आलमी योम आबादी के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद आलमी आबादी के रुझानात और उनके असरात की तरफ तवज्जो मबजूल करना है। ये दिन पायदार तरक्की को फरोग देने और आबादी में इजाफे से वाबस्ता मसाइल से निमटने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि इंसानियत के खुशहाल

0: चांसेस के कारण गर्मियां जो एक बार फिर बढ़ सकते हैं, खासकर 15-16-17 के आसपास।
1: जी बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे हैं कि इस कुछ स्पेल्स बारिशों के होंगे, ये आज और कल मुमकिन है या परसों भी हो सकते हैं?
0: आज और कल है, परसों से थोड़ा कम ही है, लेकिन जम्मू डिवीजन में सुबह शाम थोड़ी सी बारिशें हैं और हैवी शावर्स भी जो है रूल आउट नहीं किए।
1: ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर है अभी तक हमने क्या रिकॉर्ड किया है यहाँ पे, हाईएस्ट टेम्परेचर श्रीनगर में
0: 35.5।
1: और क्या उससे भी ये तजावुज करेगा टेम्परेचर की, ये नॉर्मल उसी पे या उससे कम रहेगा?
0: उसी से नीचे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा ह्यूमिडिटी के कारण टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा मतलब फील होते हैं, तो डिस्कम्फर्ट लेवल जो है बढ़ जाता है जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या आप महसूस करते हैं कि ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस हैं ये अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले ऐसा ह्यूमिड मौसम हम नहीं देखते थे?
0: नहीं, जुलाई ऑलवेज बीइंग हॉटेस्ट एज वेल एज ह्यूमिड, क्योंकि इससे पहले 38 तक भी गया है टेम्परेचर, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि टेम्परेचर जो है अभी जा रहे हैं हाल फिलहाल में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। टेम्परेचर पहले भी गए हैं, 37 भी गए जुलाई में, 38 गए है,
1: जी जी,
0: तो 34-35 अभी नॉर्मली जा रहा है, तो कोई इशू नहीं।
1: चलिए अच्छी बात है। और आपने जो कहा कि आज और कल कुछ बारिशें हो सकती हैं, तो उसे लोगों को राहत मिलने के चांसेस हैं, इम्कान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका फोन पर हमारे साथ बात करने के लिए।

0: किशोर कुमार की आवाज में आपने नगमा सुना और आप समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह
1: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। समय 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें रिले करेंगे। खबरों का थोड़ा सा इंतजार फरमाइए।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि

0: टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अमरीका को ईरानी मकामात पर हमले करने पड़े और जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में 24 जून को आए दो तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद 4,000 से तजावुज़ कर गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के चीफ जॉर्ज रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लातिनी अमरीकी मुल्क में 7.2 और 7.5 शिद्दत के जके बाद दीगरे आए दो जलजलों में कम अज़ कम 4,118 अफराद हलाक हो गए हैं और 16,740 अफराद जख्मी हो गए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप 100.1 मीटर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 पर सुन सकते हैं। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। फीफा आलमी कप में कल रात अमेरिका के इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकिश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुचोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हिसार कर रही हैं, जबकि अपनी सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर 1 यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन बढ़ाने के लिए एक रोड मैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम विरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती विरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समझ में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने उजागर किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया, जिससे दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहली सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

0: आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, वॉक करना है मगर थोड़ा तेज तेज, जिससे इंसान की सांस फूल जाए, पसीना आ जाए, बस चलना है थोड़ा तेज, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग कहेंगे।
1: जो नॉर्मल रूटीन आसे इंसान अस कदम तराव ना तम
0: टाइम
1: को
0: खर्च
1: थोड़ा
0: तेज
1: तेजी
0: तेज।
1: पहन
0: हाँ
1: पाकन।
0: बिल्कुल, अगर मैं सुबह टाइम फजर पत आव ना टाइम, यूजली सानन माजन बेन या इन काम आसान सुबह बचन सी बाकी चीज, तुम हेकन इवनिंग वॉक करते, मतलब असर के बाद वो कर सकते हैं। अगर जिसमें ज्यादा ओबेसिटी होगी तुम हेकन करते कम से कम 1 घंटा वॉक, यही ब्रिस्क वॉकिंग इंटरवल्स के, मतलब 10-15 मिनट पोक, पत कोर थोड़ा थक, पत पोक बे 10-15 मिनटन, सुख असल लाइफ स्टाइल चेंज इसको बोले।
1: डॉक्टर साहब शुरुआती है क्या कहा आदत आसे पकन टिकन मतलब वॉक कर शुरुआती 5 मिनट पर 10 मिनट इतने कि वक्त
0: बिल्कुल,
1: खोलित यूत
0: ये
1: पे तेस आदत बन यह पकन।
0: बिल्कुल, ये मे निश पेशेंट तुम वन तुम करो घंटस वॉक, अगर तुम बोजान या वन नव तन बोजान, बहुत स्टार्टस मन वन गो पकु सा तुम 10 टू 15 मिनट यूत कल आदत गए। प्लस ये जो ओबेस पेशेंट अगर ज्यादा करान विगरस एक्सरसाइज, मन क्वेठन
1: दौर
0: दौद कर खतरा आ, तुम चीज बचा खुद वन वारे मतलब कम कम यूत कल आदत बढ़े। प्लस वॉक के अलावा जो मैंने जंक फूड बोला, शुगरी आइटम्स करें अवॉइड, मतलब शुगर कार्बोहाइड्रेट जो होता है तमि कि वजह सब हद खत ज्यादा खेमो हुप यूटिलाइज कहीं गा फैटस मे चेंज। अगर शुगरी आइटम करो अवॉइड, डायरेक्ट शुगर जिसमें पड़ता है, खंड लिप्टन चाय बनान बहार सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलान
1: खंड त्रा
0: बिल्कुल सवॉइड कर, अगर लेम त्रेस चमो ना जस्ट लोम त्रवित बे त्रेस, सो तीता मुफीद, तम एंटी ऑक्सीडेंट आ ओबेसिटी गा कम, सिकन खतरा मगर इस मे खंड रलान फायद वजह से तमाम नुकसान
1: डॉक्टर आसिया जी वो इलाज जानून के इलाज अगर इस करो हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर तथा कित इलाज करान ओबेसिटी वाले पेशेंटन तथा मुतलिक दीता वैसे थोड़ा बहुत जानकारी।
0: मैं अमे ब्रो वो कि गोडा लाइफ स्टाइल चेंजेस, गोन फोकस ही कि मेडिसन ब्रो करो इस बाकी चीजन पे ये
1: सही।
0: ये नश पेशेंट मैक्सिमम एज ओबेसिटी तो मगर कुन कुन वजह निश ऑर्थोपेडिक पेशेंट ओबेसान, मगर वजह ओबेसिटी इन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम खास कर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज पेशेंट्स ये अस नश गान कॉज जान कोशिश कि इन मज कॉज क्या, अगर ये हेरिडिटी उस फिर तो पता ही तेल तम हिसाब चलान। हाँ अगर अब बाकी कॉजेज फॉर एग्जांपल पेशेंट अक आव ओबेसिटी है करान इन क्या इन्वेस्टिगेशन, अक कॉमन कॉज वनस हाइपोथायरॉइडिज्म, अगर वो या पीसीओडी मेरे पास आती है, छोटी छोटी लड़कियां तम एज ओबेसिटी के लिए ट्रीटमेंट, मगर तिमन मज ग रूल आउट कर चीज जरूरी मज हार्मोनल मतलब थायराइड प्रॉब्लम
1: सही
0: या पीसीओडी वजह अनु अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करा गो करो तो वजह सी पे फोकस बिल्कुल ये तम ठीक तम पे पान ओबेसिटी खतरे इस ट्रीटमेंट करा अत मे क्या रेजिमेंटल थेरेपी गोडे क्या हर्बल मेडिसन ये पानी बनान डॉक्टर सब निगरानी मजे बनान इन पेशेंट खुद खास कर नंबर जी करान क्या रेजिमेंटल थेरेपीज यह कपिंग हर्बल बाथ तक हर्बल बाथ मज तम हर्बस कि इंद खुद मुफीद इन ओबेसिटी पेशेंट खुद चाहे फिर डायरेक्टली ओबेसिटी खुद करो या इन अत मे अंडरलाइन कॉज पीसीओडी या थायराइड तेल तम कस्म हर्बस एड कर प्लस इंट्रोड्यूस कोर्मुत अम खुद वेट मैनेजमेंट सेक्शन यह क्या मशीन इंट्रोड्यूस करें ये ऑलमोस्ट कुन जाए कर इंट्रोड्यूस कह वरी ब्रो तो तमिक रिजल्ट माशाल्लाह असल मिले मिलान इंशाल्लाह।
1: डॉक्टर आसिया जी तुम करो मशीन कत कि हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर पे क्या मशीन तम अनम वनस ये अक्सर जायन मौजूद कहीं मशीन कित ओबेसिटी पे
0: जस्ट लागन तमन कहरियस एक्सरसाइज दिवान कर खतरे कि तम लागान तम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के जरिए गोडे मेडिसन खानूमत कैंस कल दिवान तम पे स्टार्ट करान यह करान स्टेबर्न फैट खास कर बेली फैट इस तथ करान थोड़ा सो नरम प्लस करान हर्बल मेडिसन पे यूज ये बर्न करान मशीन अत दोए त्रे कस्म अक तरीक करान बाकान बे तरीक अल्ट्रासोनिक वेवजो जरिए करान बाकान इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन यह अलग अलग मगर यह तिस मशीन कि खुदा रचिन कोज कि ग्रेन मा यी बाकी चीज करंट ऐसा कुछ नहीं है। ब्या मशीन थोड़ा हीटिंग इफेक्ट करान मतलब जस्ट बसान वन अत पे ऑयल खास यूज कर बेली फैट खुद پَتہٕ سۄ نرم چھِ کران ہیٖٹِنٛگ اِفیکٹ یُس تراوان چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ فٲیدٕ یِوان. اَگر تُہۍ وٕچھو کہِ اَگر یِتھ کٔنۍ والو ویگرٮ۪سٹی ایبرپلی آسہِ ویٹ پَتہٕ اَگر وٕچھو کٲنٛسہِ چھِ سۄ واریاہ بیلی تِمن چھِ گژھان تِم نِشان, مگر اَمہِ سۭتۍ یُس وَسان چھُ ییٚتہِ أسۍ چھِ وارٕ وارٕ وَنان تہٕ سُہ نِشان وغیرہ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. آ, یِم مِشیٖنو سۭتۍ ییٚلہِ یِم بیلٹ گَنڈان چھِ فیٹ چھُ أنٛدرٕ گژھان کَم, اوپر والا سِکِن برابر آ جاتا, سیگِنٛگ چھَنہٕ گژھان کیٚنٛہہ.

0: इन मशीन्स की एक खासियत है।
1: यम दैसिन के बोजन वाले सामान छे तमन करवे से क्लियर टीम छन तिम मशीन के खोज है इंसान कैसे बल्कि हम छ मोट के दीवान इंसान से छ मसाज सॉर्ट ऑफ गसान त तन छ पते मिस वजन से कमी गसान समय यम पत करो इस डॉक्टर फिरोज सुबह से का ये तन बोसो ये मिस मरीज से यम तासुर
2: अच्छा ना गोला मामा सगी शमशाबाद खान से मुकट आज गो बोस आज बोस सोर भी रहा भी और आमत तन साथ उसने नर ही और थोड़ा ला किट के गमस मोट के उसने वाट में वहां के ही फजना को इलाज दात के लिए फर्क के पत आज भाई और हया अस्पताल तो ये कर मैं कैपिंग तो बीक तो मैं को अन्य साथ कैपिंग करें गई मैं अत थोड़ा याद पत क्यों मैं सब लेटर दवा कंप्लीट तो इंशाल्लाह जाए तो बजना को सब साथ ठीक
1: तासुरा तो पत करो बे अकेले तो हम खर मकदम तेरे बाद नस मस्त प्रोग्राम नस मस्त करो वन क्या नस इस आखरी सवाल डॉक्टर फिरोज साब से डॉक्टर फिरोज साब अस्वीन तो ये कि युस्त ओबेसिटी बापच्चो करान इलाज हाया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर्स पे ये कुतह कारामंद शुरुआतान कितन पेशेंटन आई यू न्यूक्टाइन पॉजिटिव रिजल्ट
3: सागर जी वरिया मरीज नजीवान पे डॉक्टर जीवन इक्विपमेंट अनुमत फॉर इक्विपमेंट अन मेन चीज डॉक्टर जी कि अत मे बैली फैट अकस्म बैल्ट लागन हीट पैडच कहान और बैली फैट यल कहान पत मामूली दवा दिवान या कह जूस दिवान सह वाश आउट कहान अलहमदिल्ला वन तम यम तथ ट्रीटमेंट पेशेंटन अल तकरीबन तकरीबन पॉजिटिव रिजल्ट पानी दुत तम वो वेट कोर्मुत तम पुत ट्रीटमेंट कोर्स कचन दुहन कचा रेतन कैंसन दोन रेतन कहान त्रेन रेतन और अम पे अलहमदिल्ला तम सह बैली फैट या ओबेसिटी सर कम गुम तो सह ड्यू टू दम सारी रेजिमेंटल थेरेपीज वन इन डॉक्टर जी वो प्रोग्राम हर्बल बात मेन अम ब्रोट ग वेट मैनेजमेंट ब्रोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बस यूज कानी जड़ी बूटी कहान यूज कम चर्बी गालान बेच परहेज तनान और लाइफ स्टाइल चेंज कर अलहमदिल्ला सुन सवाल कि पेशेंट क्या गीक अल्लाह तबारक शिफा और रेजिमेंटल थेरेपीज बख्शन शिफा
1: डॉक्टर फिरोज साब तो डॉक्टर आसिया जी तुम सेठा सेठा शुक्रिया तुम दिव स मुफीद जानकारी उम्मीद सान सामीन तसान मुस्तफीद सपदम ये जानकारी से उम्मीद यम तथ प्रोग्राम प्रोग्राम के जरिए पत्मे हफ्ते तज तानकारी दिव कन हेकन तम तम पानस फायदे वातन पदातन मं चेंज अन खन चन कन आदातन मं वन बहन कन आदातन मं बचन ओबेसिटी नश अगर तम तम आदात अपना बाप तगर तह समन बास कि तह मन ओबेसिटी मं क्या फर्क आम कहीं तेल जरूर तह रुख कर डॉक्टर सुन तम बाप हेको तुम हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर सेकु प्लाजा अपोजिट ओल्ड बस स्टैंड बटा मालू हेको डॉक्टर साबन मशवरात तो तिहद इलाज तो तरीक़ार अपन तो ओबेसिटी नश नजात पव दीव अजक इजाजत अस्सलाम अलैकुम।
4: यो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये प्रोग्राम तहतम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर सैफको प्लाजा अपोजिट बस स्टैंड बटमालू श्रीनगर
5: ये बाकी तमाम दादियों अलाव डिस पाइलस तो प्रोस्टेट बीमारी बगैर ऑपरेशन इलाज सप्तान छु फोन 7051545788
4: याद थव हया वेलनेस सेंटर बे ब्रांच
6: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर सुबह के 9 बज चुके हैं।
7: आज की सुर्खियां
8: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा पियाजो एक्साइड इशर निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
9: सुबह खैर समय आज शनिचरवार है साल 2026 के जुलाई महीने की 11 तारीख मुताबिक 25 मुहर्रम अल हराम 1448 हिजरी मकामी अखबारात की सुर्खियां लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी और मेरे साथ हैं मेरे साथी रशीद निजामी। जी रशीद
10: 57 रोजा अमरनाथ यात्रा 2026 पहले 8 दिनों में तकरीबन

0: 1.70 लाख यात्रियों ने किया दर्शन। यात्रियों की राहत, हिफाजत और सहूलत अवलीन तरजीह। हुकाम को ओवर चार्जिंग, जारी रजिस्ट्रेशन और धोखाधड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाने की हिदायत। महफूज, हमवार और किसी भी किस्म की परेशानी से पाक यात्रा को यकीनी बनाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकाम से तलकीन।
1: कश्मीर मैराथन वादी की मेहमान नवाजी का पैगाम वजीर आला। रॉयल स्प्रिंग्स गॉल्फ कोर्स में ऑफिशियल मर्चेंडाइज की रस्मी रोनुमाई की तकरीब पर खिताब।
0: जम्मू कश्मीर की मईशत का बड़ा इन्हिसार सियाहत पर। सियाहती शोबे को फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी। कश्मीर में मजहबी सियाहत के इम्कान बेहद रोशन। अमरनाथ यात्रा वाजह मिसाल। उमर अब्दुल्ला।
1: जम्मू कश्मीर हाईवे पर उधमपुर में एक मुसाफिर बस बेकाबू हो गई। अमरनाथ गुफा जाने वाले मध्य प्रदेश के 6 लोग जख्मी हो गए।
0: 2029 के आम इंतखाबात तक एक कौम एक इंतखाब इस्लाहात की फालियत का कवी इम्कान। तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल तरीकाकार वजह करने की कोशिश। तकरीबन 99% सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमें तजवीज की हामी। चेयरमैन पार्लियामानी पैनल पीपी चौधरी कहा, अलग अलग इंतखाबात से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का माशी नुकसान। हम आहंग इंतखाबात फायदे बख्श।
1: सिर्फ 8 दिनों में 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। आने वाले हफ्तों में यात्रियों का मुसलसल बहाव जारी रहने का इम्कान। हुक्काम।
0: एक और उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मरकजी मुआविनत याफ्ता स्कीमों और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का लिया जायजा। फलाही स्कीमों के तमाम मुस्तहकीन को फायदे की फराहमी और मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।
1: ये सुर्खी एक अखबार के पहले सफे पर शाया हुई है। लद्दाख की खूबानी दुबई समेत बैन अवी मंडियों तक पहुंचाने का मंसूबा। 14 जुलाई को पहली खेप मुतहदा अरब इमारात रवाना करने के लिए तैयारियां मुकम्मल।
0: बेरोजगारी कश्मीरी नौजवानों की शादियों में ताखिर का बड़ा मौजब। माशी अदम इस्तेकाम के बायस तालीम याफ्ता नौजवान शादी का फैसला मुअख्खर करने पर मजबूर। सरकारी मुलाजमत अब भी रिश्तों की पहली तरजीह। माहरीन ने बदलते समाजी रुझानात की निशानदेही की।
1: रियासती दर्जा बहाली एहतजाज, अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। सुनील शर्मा।
0: राजौरी में जंगली सब्जी खाने से मुबैना फूड पॉइजनिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी।
1: जम्मू कश्मीर में गर्म मौसम बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात।
0: सुर्खियां अभी और भी हैं, समय हमारे साथ रहिएगा।

0: ये थी आज की सुर्खियां और प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं पायान सुबह, जो आप सुबह 7:10 से दिन के 11:30 तक समाप्त करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ रजीत निजामी और मेरे साथ हैं जावेद अंद्राबी। जावेद, ये जो वक्त है ये एक गजल का वक्त है। इस वक्त हम अपने सुनने वालों की एक गजल सुनवाते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब हम गजलों की फहरिस्त पे नजर डालते हैं तो बहुत सारे गजल गुलकार ऐसे हैं जिन्होंने बरसग़ीर में गजल को मारूफ किया, मकबूल किया, मशहूर बनाया।
1: सही बात है, सही बात है।
0: उनमें अगर देखा जाए तो बेगम अख्तर, तलत महमूद, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह, अलोक जलोटा,
1: जी जी,
0: ये काबिले जिक्र नाम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन जावेद, आपको ये भी इल्म है कि कुछ ऐसे गुलकार जिनको हम प्लेबैक सिंगर कहते हैं या जो फिल्मों के लिए गाते हैं, उन्होंने भी गजलें गाई हैं। एक गजल हम इस वक्त पेश करते हैं। ये गजल गाई है एक ऐसे गुलकार

0: कार ने, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये फिल्मों के लिए फिट हैं और इन्होंने फिल्मों के लिए लाजवाब गाने गाए हैं, मेरी मुराद मोहम्मद अजीज से है।
1: अच्छा, मोहम्मद अजीज।
0: तो आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गजल।

0: साए लहराए तो उनको तेरा घूंघट समझे, दिल की धड़कन को तेरे पांवों की आहट समझे। डल गई रात तो उजाले की किरण लहराई, दूर तक जाके ये मायूस नजर लौट आई। समीन, ये अशार थे फयाज रिफत साहब के। फयाज रिफत साहब हमारे स्टेशन में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं। रशीद
1: जी,
0: आप रिकॉल कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, ये जो गज़ल इन्होंने गाई है, मोहम्मद अजीज़ ने, ये फयाज रिफत साहब की गज़ल है और फयाज रिफत ने रेडियो में एक काफ़ी अरसा गुजारा और मैं खुश असलूबी के साथ यहाँ काम किया। और ये जो गज़लें हैं ना, ये चुनिंदा गज़लें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, हालांकि मेरी नज़रों से उनका कोई मजमुआ गुजरा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल की शायरी की।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या ख्याल है जावेद साहब? अब
0: बस खबरों का वक्त,
1: लेकिन खबरों से पहले हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद खबरें सुनेंगे।
0: जी हाँ।
2: पयामे सुबह,
3: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
2: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
3: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
2: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
2: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
1: नौ बजकर 20 मिनट होने वाले हैं, अब खबरें होंगी, पहले कश्मीरी और उसके बाद उर्दू में।
4: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
5: आदाब, ये छा आकाशवाणी श्रीनगर, सुबह 9:20 सबित खबरन हूँ बुलेटिन हेत चुस्बु मंजूर अहमद। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्राए हिंदन गोडनिकन अठन दोहन मंज छु दर्शन करन वालिन यात्रियन हूँ तेदाद जिलच खुत ज्याद सबदन पत अख बोड पड़ाव ताई सपुदमुत। अमे हवाल वुन अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मंज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान जि यात्रियन हूँ यूता बोड तेदाद छु बाबा बर्फानी सिंद अकीदच अकसी करान। अत दौरान सपद आज ते बालतल ते चंदनवाड़ी हिजो वतो के सास यात्री गुफाई कुन रवान। हुपर से जेमी पेट आज सुबह यात्रियों हज दहिम छोक तिवादी कुन रवान करना आमज। अ दौरान चु लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोनमुत जे इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पुलिस फौज नीम फौजी छोक तो दुमिन मुतलक इदारन हंद अथवास सीत छि यात्रा की पूर अमन महफूज तो रित पेट मुनकद करन बापत कुल हुम इंतजाम करन आमित। बालतल बेस कैंपक दौर करित कुर श्री अमरनाथ जी यात्राए हिंदन इंतजामन हुन जायज हवान एल जी एन तत मौजूद यात्रियन सीत मुलाकात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोन रिहाइश सफाई तबी सहूलतन तो दुमिन बुनियादी इंतजामन हुन मुआयना करान जि बालतल तो चंदनवाड़ी मंज कायम हथ हथ

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं उमर मुख्तार। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 8 दिनों में दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद ने 2 लाख का हिंसा पार करके एक बड़ा संगमेल तय किया है। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद बाबा बर्फानी के तई श्रद्धालुओं के अकीदे की अक्कासी करती है। इस दौरान आज भी बालथल और चंद्रवाड़ी के रास्ते से कई हजार यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए हैं। उधर जम्मू से आज ललसुब यात्रियों का 10वां जत्था भी वादी की तरफ रवाना किया गया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों और दीगर मुतलिका इदारों के इश्तराक से यात्रा के पुरअमन, महफूज और एहसन अनाकात के लिए जामिया इंतजाम किए गए हैं। बालथल बेस कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजाम का जायजा लेते हुए LG ने वहां मौजूद यात्रियों से भी मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिहाइश, सफाई, तिबी सहूलियात और दीगर बुनियादी इंतजाम का मुआयना करते हुए कहा कि बालथल और चंदनवाड़ी में कायम 100-100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल यात्रियों को मियारी तिबी खिदमात फराहम कर रहे हैं।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में

0: ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
1: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के तीसरे शुमारी के लिए ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाबकुशाई की। ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाबकुशाई के साथ ही मजकूरा मैराथन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुल गया है। वाजह रहे कि यह मैराथन अक्टूबर के महीने में मुनक्किद होगी। इसी दौरान खिदमत सेंटर एसोसिएशन के एक वफद ने भी उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। वफद के अरकान ने वजीर आला को खिदमत मराकज के कामकाज और लोगों को इन मराकज के जरिए फराहम की जा रही खिदमात के बारे में तफसीली जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में एक अहम पेशरफ्त के तिब के शोबे में तालीम के फरोग के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS के लिए 50 सीटों के इजाफे का ऐलान किया गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इस सिलसिले में GMC श्रीनगर में रवा तालीमी सेशन से ही MBBS की मौजूदा 200 निशस्तों को 250 करने की मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में सामने आए एक वाक्य के तनाजुर में तालीमी इदारों में दर्सी किताबों और दीगर मवाद की जांच के लिए एक तरीकेकार वज़ह किया है। इन जाब्तों के मुताबिक एक मुनज़्ज़म इदारा जाती फ्रेमवर्क के जरिए तदरीसी जांच और मवाद की तस्दीक के लिए वक्तन फवक्तन सभी स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में किताबों और दीगर मुतालाती मवाद की का जायजा लिया जाएगा। महकमे ज़री पैदावार में तकनीकी सेक्रेटरी GA सूफी ने पशुपालन और भेड़ पालन के शोबे में कश्मीर खित्ते के किसानों के लिए खिदमात की फराहमी और महकमा जाती स्कीमों की अमलावरी में बेहतरी लाने पर जोर दिया है। कश्मीर सूबे के महकमे पशुपालन की कारगुजारी का एक मीटिंग में जायजा लेते हुए उन्होंने मुतलिक अफसरों को हिदायत दी कि वो सभी स्कीमों और प्रोग्रामों की बरवक तकमील यकीनी बनाने के लिए रुकुमात के तसरुफ में तेजी लाए। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने जिले भर में आयुष तिबी खिदमात की फराहमी के लिए कौमी आयुष मिशन की सरगर्मियों की कामयाब अमलावरी यकीनी बनाने के लिए इस मकसद के खातिर बैन महकमा जाती तालमेल और मुतवातिर निगरानी पर जोर दिया है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मासिक गुफ्तगू के मौजू से मुतलिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जैनपुरा शोपियां में भी मनुष्यात से छुटकारा पाने की गरज से एक बड़े जानकारी प्रोग्राम का इनका किया गया। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, सियाहत, खेल और आफात से निपटने के बंदोबस्त के शोबों में 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं जिसे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तालुकात में एक नई लचक आने की तवक्कु है। और अब आखिर में दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर सुबह के 9:30 हुए हैं।
3: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रीड, हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रीड।
4: समयीन आदाब, न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर मैं शबीरुज़्ज़मा। हमारे आज के शुमारे में कौमी राजधानी नई दिल्ली में वजीर दाखला की सदारत में सरहदी रियासतों और यूटीज के SPs की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का श्रीनगर में कायम यात्री निवास में इंतजामात का जायजा। SKICC श्रीनगर में पायदार सियाहत और एजुकेशन कनक्लेव का इनेकाद और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अब पेश है मौजूदात की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहदें, खुशहाल सरहदी खत्ते और एक खुशहाल मुआशरा एक साथ मिलकर ही मुल्क को महफूज बना सकते हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में सरहदी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के सभी SPs के साथ मुनक्कदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुल्क के नक्सलवाद से मुतासर इलाकों को नक्सलवाद और जम्मू कश्मीर नीज शुमाल मशरक खत्े को दहशतगर्दी से पाक किया गया है जो कि एक इज्तिमाई कामयाबी की अलामत है। कॉन्फ्रेंस में मुतलिका रियासतों और UTs के साथ साथ जम्मू कश्मीर के SPs भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पांथा चौक यात्री निवास में इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि यात्रियों की आसानी के लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेहमान यात्रियों की बदौलत हमारे हैंडलूम और दस्तकारी मसनूआत को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया जाना चाहिए और इस तरह से हमारी मुनफरिद सकाफत हर श्रद्धालु के घर तक पहुँच जाएगी।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नश सब्दान।

0: आप वाकई मजबूर हैं तो ये कमेटी का डोमेन है या उस मैनेजिंग कमेटी का फ़र्ज़ बनता है कि उस शख्स की वक्फ बोर्ड का फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि ये मुकदम साहब की ज़ियारत पर सीढ़ियों पर क्यों भीड़ मांगते हैं। तो डोमेन है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड देखे कि ये क्यों हम इनको करने दें। हाँ, अगर कोई मजबूर है उसकी स्टडी करें, उसकी तहकीकात करें, वेरीफाई करें। अगर मुस्तैक है तो वक्फ के पास पैसा है, उसके पास आमदनी है, उस पैसे में से उसकी वो रिहैबिलिटेशन करें, उसका उसका काम दें, उसको कुछ काम दें, या अगर वो काम करने के लायक ना है तो उसको माहाना तरीके से किसी तरह से उसकी इमदाद करें। तो इस तरह से भीख मांगना बंद हो जाएगा। तो यहाँ जिम्मेदारी है और यहाँ रोल बनता है हम सब का, यानी हम सब लोग चाहे मस्जिद से वाबस्ता हैं, मंदिर से वाबस्ता हैं, गिरजाघर से वाबस्ता हैं या किसी और स्थापन से वाबस्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना है कि इस को कैसे हम ख़त्म करें, कैसे इस मेंस को यहाँ से नेस्त नाबूद करें।
1: बिल्कुल, हम आपके साथ ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी रखेंगे। पहले एक पैगाम, उसके बाद एक नगमा, उसके बाद और आपके साथ बात करेंगे।
2: इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर का पैगाम है, आप अपनी खैरात, सदकात और जकात जकात सेंटर इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर, मुत्सिल ललदत अस्पताल श्रीनगर के अलावा ट्रस्ट के यतीम खानों, दारुल एहसान कालपुरा चाड़ूरा या दारुल मोहसिनात सिंहपुरा पटन में भी जमा करा सकते हैं। रकम की अदायगी ट्रस्ट के बैंक खाता जात के जरिए भी की जा सकती है। याद रहे, रकम की अदायगी पर इनकम टैक्स छूट मिलती है।

0: سامعین، تو یہ سبوزان چھا کر تو رو صداکار غلام محمد کاوات ستھی یہ اس کلام شمس فقیر سنس دوم سالانس پرارو سامعین، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، 12 بجنے والے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ آکاش وانی دلی سے انگریزی اور ہندی میں خبریں سنیں گے۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन

0: और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister's endorsed the Indian-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally.
2: Is the decision by the two prime ministers to raise the relationship to a strategic partnership. They also decided that this goal of a more strategic relationship would be approached systematically, for which they decided that there would be a roadmap to take us forward the next couple of years. This roadmap has been summarized, in fact, in a document which is being released along with the joint statement that the two prime ministers are issuing at the conclusion of their talks.
1: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
3: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये, और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: The bilateral discussions were preceded by a ceremonial welcome at the Government House, where Prime Minister Modi was accorded a guard of honour. Later in the day, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Defence Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous capability. He said the warship is capable of tackling threats in the air, on the sea surface and beneath the sea, and will significantly strengthen India's maritime security and operational reach across the Indian Ocean region.
4: मल्टी फंक्शन रडार के साथ
5: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टी फंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक आईएनएस महेंद्रगिरी एज इनविंसिबल एंड

फिल्म जीने की राह से आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा समाप्त किया, आनंद बख्शी के दिए बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी। आइए सामिन अगला नगमा सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बुढ़ा मिल गया से।

समीन फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। अगली सौगात हमने ली है फिल्म जीवन मृत्यु से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के दिए बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी।

समीन फिल्मी नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। यह आकाशवाणी श्रीनगर है 268.8 मीटर्स और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप उर्दू और कश्मीरी में खबरें समाप्त करेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं उमर मुख्तार। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, सियाहत, खेल और आफात से निमटने के बंदोबस्त के शोबों में 5 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में एक नई लचक आने की तवक्कु है। ये मुफाहमत नामे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लैक्सन के दरमियान ऑकलैंड में मुनक़िदा वफदी सतह की बातचीत के बाद तय पाए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों और दीगर मुतल्लिका इदारों के इश्तराक से यात्रा के पुरमन, महफूज और अहसन इनेकाद के लिए जाम इंतजाम किए गए हैं। बालथल बेस कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजाम का जायजा लेते हुए LG ने वहां मौजूद यात्रियों से भी मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिहाइश, सफाई, तिबी सहूलियात और दीगर बुनियादी इंतजाम का मुआयना करते हुए कहा कि बालथल और चंदनवाड़ी में कायम 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल यात्रियों को मियारी तिबी खिदमात फराहम कर रहे हैं।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए, ये व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
0: दरी असना सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 8 दिनों में दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद ने 2,00,000 का हिंसा पार करके एक बड़ा संग मील तय किया है। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद बाबा बर्फानी के तय श्रद्धालुओं के अकीदे की अक्कासी करती है। इस दौरान आज भी बालथल और चंदनवाड़ी के रास्ते से कई हजार यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए हैं। आज दोपहर 12 बजे तक मजीद 14,303 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। उधर जम्मू से आज अलल सुबह यात्रियों का 10वां जत्था भी वादी की तरफ रवाना किया गया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदो कवल चिब ने भी कल शादीपुरा यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिकीन को हिदायत दी कि वो बिला खलल अमरनाथ जी यात्रा को यकीनी बनाए। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि वो यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करे। इस मौके पर उन्होंने कई श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के सदर एस जसपाल की कयादत में एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके गुरुद्वारा छठी पातशाही की खूबसूरती को मजीद जाज़बे नजर बनाने और दिगर मुतल्लिका मसाइल पर तबादले ख्याल किया। दरियासना MLA हीरानगर एडवोकेट विजय कुमार शर्मा ने भी LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने अपने इलाके के अवामी और तरक्याती मसाइल उनके नोट्स में लाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के तीसरे शुमारे के लिए ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाब कुशाई की है। ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाब कुशाई के साथ ही मजकूरा मैराथन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुल गया है। वाज़ेह रहे कि यह मैराथन अक्टूबर के महीने में मुनाकिद होगी। इस दौरान खिदमत सेंटर एसोसिएशन के एक वफद ने भी उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। वफद के अरकान ने वज़ीर आला को खिदमत मराकज के कामकाज और लोगों को इन मराकज के जरिए फराहम की जा रही खिदमात के बारे में तफसीली जानकारी दी।

0: डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने एक मीटिंग के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी गोबर धन स्कीम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के निफाज का जायजा लिया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की मौसर अमलावरी के लिए एक मजबूत लाए अमल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में एक अहम पेशरफ्त के तहत तिब के शोबे में तालीम के फरोग के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS के लिए 50 सीटों के इजाफे का ऐलान किया गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इस सिलसिले में GMC श्रीनगर में रवा तालीमी सेशन से ही MBBS की मौजूदा 200 निशस्तों को 250 करने की मंजूरी दे दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुलगाम एजाज अहमद खान की सदारत में कल जिले में अदालती ढांचे और इंसाफ की फराहमी के निजाम को मजीद मजबूत बनाने की गर्ज से मुख्तलिफ मुतलकीन की जिले राबता कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान दीगर अदालती ढांचे से मुतलिक मसाइल पर भी गौर खास किया गया। संकल्प हब फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट और मिशन शक्ति शोपियां ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत जिले में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस इकदाम का मकसद बच्चियों के तहफ़ तालीम और इन्हें बाइख्तियार बनाने के तय आवाम में आगाही पैदा करना है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर खबरन बुलेटिन हूँ बु मंजूर अहमद। भारत न्यूजीलैंड बचाव सियाहत खेल तो आफ्सन अंद बुर दिनक बंदोबस्त शोबन में पांचन अहम मुफामत नामन पे दस्तखत कर यम सोशवें मुल्कन दरमियान दोतरफ तल्लुकन मज मजीद वुजार मिलन तो मुफामत नाम सपद वजी अजम नरेंद्र मोदी तो न्यूजीलैंड किस तिंदिस हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन्स दरमियान ऑकलैंडस मज मुनद कर आमच वफदी सूत्रच कत बात पत तय। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पुलिस फौज नीम फौजी चौक तो दुमन मुतलक इदारन हंद अथवास यात्रा की पूर अमन महफूज तो रुत पे मुनद कर बापत कुल हम इंतजाम कर आमित बालतल बेस कैंप दौर कर श्री अमरनाथ जी यात्रा हंद इंतजाम जायजा हवान लेफ्टिनेंट गवर्नरन तत मौजूद यात्रियों मुलाकात अत मौक पे रिहायशी सफाई तबी सहूलत तो दुमन बुनियादी इंतजाम जायजा हवान वो लेफ्टिनेंट गवर्नरन बालतल तो चंदनवाड़ी मज कम हथ हथ बिस्तर वाल हस्पताल यात्रियों हंद बाप जबर खजमत आयतन थाव आम।
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है। सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया। फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए ये व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
1: अथ दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा हंद गिक अठन दोहन मज दर्शन कर वाल यात्रियों हूं तदाद जच खुत ज्याद सपदन पत अख बोड पड़ाव तय सपूदमुत अम हवाल वो अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यात्रियों हूं यूत बोड तदाद बाबा बर्फानी सद अकीद अक्सी कर आज त सपद बालतल तो चंदनवाड़ी हजो वतो कें सास यात्री गुफाए कुन रवान यन दोचन बहन बजन ताम मजीद 14,303 यात्रियों शिवलिंग दर्शन कोर हुप जम पे आज सुबह यात्रियों दहिम छोख वादी कुन रवान कर आम बंडपूरी डिप्टी कमिश्नर इंदू कंवल चिब्बन हूं रात शोदपुर यात्रा ट्रांजिट कैंप दौर कर श्री अमरनाथ जी यात्रा बापत दस्तियाब सहूलतन जायजा तमो दलुकदार हिदायत जम बनविन श्री अमरनाथ जी यात्रा मुनद सपदन कुन रुकावट रोस यकीनी तमो दलक हकम हिदायत जम कर यात्रियों प्रथ मुमकिन सहूलत फराहम अथ मौक पे कमो कैचन यात्रियों सत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के सदर एस जसपाल सिंदिस क्यादत मज एक वफदन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुलाकात करित गुरुद्वारा छट्टी पादशाही हिंस खूबसूरती मजीद लोभवन बनावनस तो दुमन मामलन पे तबादुल ख्याल अथ दौरान कोर MLA हीरानगर एडवोकेट विजय कुमार शर्मा तो LG मनोज सिन्हा मुलाकात यद दौरान तमो पन्ने इलाक अवमी तो तरक्याती मामल तिज नोटस मज वजीर आला उमर अब्दुल्ला श्रीनगर कश्मीर मैराथन के त्रेम

0: ने उसमें जन्म लिया और हम भी उस नई दुनिया का हिस्सा है। तो उसके बाद कई मसाइल सामने आए, उसमें से एक मसाला सामने आया 80 की दहाई के आखिर में
1: जी।
0: जब टोटल पॉपुलेशन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है दुनिया की वो 5 बिलियन तक पहुंच गई। तो ये 11 जुलाई का दिन था 1987 साल के जब ये आदाद व शुमार सामने आए। तो दुनिया एक ऐसे मसले की तरफ मुतवज्जह हो गई कि जो उन्हें लगा कि बहुत ही ख़तरनाक मसला है, बहुत ही अहम मसला है और जिसको हमें देखना पड़ेगा। तो तब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हुई, यानी आबादी गोया इंसानी आबादी जो है वो हदूद से तजावुज़ कर गई है। हालांकि आबादी का मसला बहुत पहले से रहा है, हमारे मालथूसियन थ्योरी है रही है कि कुदरत कैसे खुद अपना वो हाउ इट टेक्स केयर ऑफ इट, वो कैसे अपने मुख्तलिफ आलामों मसाइब के ज़रिए, मुश्किलात के ज़रिए, आफात के ज़रिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करती रही है। लेकिन बाद में इंसानों को लगा कि नहीं, इंसानी जो तादाद है इंसानों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब ये मसला क्यों बन गया। मसला ये इसलिए बन गया क्योंकि इंसान जो है उसकी ज़रूरियात है। इंसान हम कहते हैं कि अशरफुल मखलूकात है और तमाम क्रिएशंस पर इसको एक अबूर हासिल है, दस्तरस हासिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही एक्सप्लॉयट करता है या कंज्यूम करता है रिसोर्सेज को और जो वसाइल है वो महदूद है और यहाँ इंसानी ज़रूरियात जो है, ख्वाहिशात जो है वो लामहदूद है। तो यहाँ एक टकराव, यहाँ एक मसला पैदा हो गया। मसला ये हो गया कि ये जो वसाइल हैं, महदूद वसाइल, इनको किस तरह से जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे और इक्तसादी मसाइल के साथ बाद में जुड़ा हुआ है, समाजी नाबराबरी के साथ जुड़ा हुआ है और जो फिर समाज में टेंशन पैदा होते हैं, परेशानियाँ पैदा होती हैं, ये सब आपस में लिंक्ड है। तो ये एक मसला बहुत अहम बन गया। तो जब से ही अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका नोटिस लेकर के आलमी आबादी के इस दिन को मनाने की शुरुआत की, ये इसका मुख्तसर सा तारीखी पस मंजर है। 87 से ये मनाया जा रहा है आलमी सतह पे और इसके हवाले से अवेयरनेस पैदा की जा रही है। अब अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग बरआज़म में अलग अलग नवियत की प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसी हिसाब से टैकल करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही है मीडिया के ज़रिए से। और फिर इसके बहुत सारे और मशमूलात है या बहुत सारी और इसकी थीम्स भी है और हर साल अक़वामे मुत्तहिदा जो है वो इसके लिए एक थीम मुकर्रर करते हैं।
1: अच्छा, ये तो हुआ आलमी तौर पर, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, हमारा जो मुल्क है पूरे आलम में दूसरे नंबर पर है आबादी के लिहाज से।
0: बिल्कुल,
1: चीन पहले नंबर पर,
0: चीन के बाद
1: हम हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कौन कौन से रुझानात उभर कर आ रहे हैं हमारे माशरे में या अगर हम कहें कि हमारे मुल्क में, ताकि हम इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर काबू पा सकें?
0: जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब से पंचसाला मंसूबों का आगाज़ हुआ आज़ाद हिंदुस्तान में, तो जभी से हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो दी कि पॉपुलेशन एक मसला है, ख़ासकर जैसे आपने कहा कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पर और हिंदुस्तान की आबादी अगर 8 बिलियन से तजावुज़ कर गई है पूरी आलमी आबादी, तो उसमें हिंदुस्तान की आबादी बहुत दूसरे नंबर पर आता है और बहुत बड़ी इंसानी आबादी हिंदुस्तान में रहती है। तो ये बहुत पहले से सरकारों का इसकी तरफ जो है तवज्जो रही है। तो इसमें लिहाजा एक वक्त ये आया कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात हुई, यानी आपको एक मशहूर एडवर्टाइजिंग कैंपेन कई साल तक चली रही, हम दो हमारे दो, वो तो ज़बान ज़्यादा आम हो गई। तो पहले तो ये भी बात हुई थी कि एक बच्चा एक ही काफ़ी, फिर पहले तो हम दो हमारे दो, बाद में एक ये भी एक पेरेंट उसमें यह आया था कि दो से माफी एक ही काफी।
1: जी जी,
0: तो यानी ये पॉपुलेशन को, यानी बर्थ कंट्रोल पे एक फोकस रहा, ये एक चीज थी। हालांकि बाद में एक और चीज की तरफ मुतवज्जो हुई सरकारें जो भी प्लानिंग में है या बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर लिखा, तो उन्होंने कहा कि इंसानी जो आबादी है ये एक वसीला है, असल में ये खुद ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। परेशानी असल में यह है कि इस ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से हम खुद कफील बनाएं, इसको कैसे सिक्योर्ड बनाएं और इसका कैसे सही इस्तेमाल हो, तो उसकी तरफ भी तवज्जो दी गई। यानी खाली पॉपुलेशन को रोकना एक खाली ये तदारुक नहीं हो सकता या ये मसले का वाहिद हल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना और स्किल्ड लेबर को, यानी चाइना ने एग्जांपल उसमें खड़ा की है कि उन्होंने किस तरह से अपनी आबादी को अपना रिसोर्स बना दिया, यानी प्रॉब्लम को उन्होंने एक रिसोर्स में, अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया, एक सोल्यूशन बना दिया है। तो उसकी तरफ भी यहाँ जो बाद में प्लानिंग जो भी सरकार की तरफ से आई उसमें भी जो है तवज्जो दी गई। और एक इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मसला, हालांकि हमारे यहाँ तो वो परेशानी नहीं, वो मगरब को ज़्यादा परेशानी लाहक थी, वहाँ जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में ये मसाइल पैदा हो गए थे कि वहाँ ख्वातीन या तो अव्वलन शादी के लिए तैयार नहीं और अगर जोड़े शादी के लिए

0: आया है कि एक फैमिली में दो बच्चे हों, ये तो एक वक्त में जहां चार और पांच बच्चे नॉर्मल हुआ करता था, अब ये एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है समाज में, माशरे में, कि वो दो बच्चे वो इस बात की तरफ मुतवज्जा हो गए हैं या इस आमादा हो गए हैं ये मानने पर कि क्वालिटी लाइफ, तरबियत, तग़ज़िया, इन सब चीज़ों को और अपने रिसोर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम दो बच्चों को क्वालिटी लाइफ देते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी है। तो एक तो दो बच्चे और यानी वालदैन के दो बच्चे, ये एक नॉर्मल या एक आम फैमिली सेटअप अब हो गया है जिसको कबूलियत, कबूल आम मिल गया हमारे यहाँ, एक आइडियल फैमिली, मिसाली फैमिली,
1: दो बेटियां हो, दो बेटा बेटी हो, आपको ये नहीं कहते कि मेरी दो बेटे तो मुझे बेटा जरूरी,
0: बेटा जरूरी, तो कम अज कम एक आम फैमिली में, जो आम फैमिली आप कहें, आप यानी अगर आप निकालें एक मिसाली फैमिली, तो उसमें पूरे साउथ एशिया में आप देखें कि नॉर्म ये है कि दो बच्चे ये रखने हैं, तो ये एक अवेयरनेस, इसके लिए एक बहुत वक्त गुजरा कि लोगों को इस पर आमादा किया जाए। अब इसके बाकी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है, मसलन असल में ये प्लेटफॉर्म है किस लिए, वो प्लेटफॉर्म इसलिए है कि पॉपुलेशन के डायनेमिक्स को एड्रेस किया जाए। अब जब डायनेमिक्स की हम बात करते हैं तो हम इसको देखते हैं किस तनाजुर में, पॉपुलेशन को देखते हैं एनवायरमेंट के तनाजुर में, सस्टेनेबल ग्रोथ के तनाजुर में। अब प्रोग्रेस या ग्रोथ एक वाहिद मसला नहीं बल्कि उसको कैसे सस्टेन किया जाए, तो सस्टेनेबिलिटी एक इशू है। उसके साथ साथ मसलन जेंडर इक्वालिटी जो मैं अर्ज कर चुका हूँ, और ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट एक अहम थीम है जो पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को एड्रेस करने के लिए अब जिस पर बात हो रही है वो भी इस दिन के साथ मुनासिबत रखती है, ये सारी चीज़ें, या अर्बनाइजेशन या हेल्थ केयर नीड्स, जैसे मैं कह रहा था जच्चा बच्चा और उसका हेल्थ
1: जी।
0: तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी पॉपुलेशन डे के साथ मुताबिकत रखती है। और फिर नौजवान पॉपुलेशन जो यानी जो यूथ है, अक्सर आप देखें कि हिंदुस्तान में या अक्सर साउथ एशियाई ममालिक में आप देखते हैं कि यूथ की, युवा की तादाद जो है, नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है, तो उस पर भी फोकस किया जा रहा है, वो भी पॉपुलेशन डे के हवाले से एक अहम थीम है या एक अहम फोकस है जिस पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है।
1: हर साल जैसे कि आपने अभी फरमाया कि नहीं पहले थीम पे नहीं चलते, डॉक्टर साहब ये जो आज का दिन है हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है, क्या सेलिब्रेशंस होती हैं?
0: एक तो खैर जो हम कर रहे हैं काम ये हो रहा है, ये जानकारी और बहस व तमहीस हो रही है मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, इस पर सिम्पोजियम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, ऐसे कम्पटिशन्स हो रहे हैं, और फिर बल्कि मुझे लगता है कि एंगेजमेंट और ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब सोशल मीडिया का ज़माना है और लोगों तक पहुँचने के वसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वसी हो गए हैं, अब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कॉन्शियस लोगों को चाहिए कि ऐसी जो भी ऐसे जब अयाम आ जाया करें तो हमें एक मौका फराहम होता है उन चीज़ों, उन मसाइल पर बहस करने का जो हम आम जिंदगी में, आम दिन में शायद यानी मसाइल होते हैं लेकिन हमें इतनी फुर्सत और फरागत नहीं मिलती, वक्त नहीं है, कहाँ हम रोज़ ऐसी बातों में जो है उसके लिए वक्त निकालें, लेकिन ये एक मौका बहुत अहम है। तो सरकारी सतह पर जो होता है सो होता ही है, सिविल सोसाइटी को भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत एक्टिव रोल और प्ले करने की ज़रूरत है। कि अब मैंने कहा ना कि सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ही मसला नहीं है, ये सिर्फ हम दो हमारे दो वाली बात नहीं है, बल्कि बाद में इसके और जुज़ियात भी है, हेल्थ एक अहम है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, और रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से हम वसाइल को कॉन्शियसली इस्तेमाल करें ताकि आबादी का अक्सर व बेशतर हिस्सा उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो इसमें आप वाटर मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हैं, इसमें आप फूड सिक्योरिटी की भी बात बाद में कर सकते हैं, यानी सारी चीज़ें जो है
1: लिंक,
0: सारी इंटररिलेटेड है। तो इसमें हो बहुत कुछ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो रहा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मैंने कहा कि ये एक हमारा छोटा सा मे बी ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन सामीन तक हम पहुँच रहे हैं तो इसके अलावा भी बहुत एंगेजमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का रोल बहुत अहम है इसमें।
1: स्कूली सतह पर हम क्या कर सकते हैं, चूँकि आप देखें आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो जो हमारी मुझे लगता है जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी दैट इज इन अवर यूनिवर्सिटीज राइट नाउ,
0: जी जी,
1: सो हाउ डू यू एड्रेस देम एज फार एज दिस डे इज कंसर्न्ड।
0: पहले तो एक टीचर की हैसियत से जो मेरा काम है वो ये है कि जैसे एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस में पैदा करूँ, वो भी इसके साथ लिंकड है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि जुडिशियस इस्तेमाल, मुनसिफाना इस्तेमाल वसाइल का, उसके हवाले से नौजवानों की तरबियत करूं, तो उनकी कॉन्शियंस को मैं इस तरह से बिल्ड करूं, उनको इस तरह से अवेयर करूं, न सिर्फ खाली बातों की सतह पर, न सिर्फ लेक्चर्स की सतह पर, बल्कि अमली तौर मैं उनको احساس کی حد تک لے جاؤں اور انہیں یہ باور کراؤں کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے وہ ترتیب

0: ताकि वो कॉन्शियस सिटीजन बने और वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इन चीजों का ख्याल रखे कि वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के हवाले से।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात हमारे कश्मीर की, जैसे आपने बताया कि कैसे क्या क्या इकदाम हमें उठाने चाहिए या आप कैसे हम इस दिन को मनाते हैं, तो हर साल इस दिन का एक मखसूस थीम रखा जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस साल का थीम,
0: इस साल का थीम जो चुना गया है वो बहुत ही दिलचस्प थीम है और अहम है। वो है कि जो हमारे नौजवान हैं, हाल और मुस्तकबिल में इन नौजवानों की उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से बात की जाए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब जी।
0: तो जैसा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आबादी का एक बेशतर हिस्सा हमारे मुल्क में और साउथ एशिया में और लार्जली वर्ल्ड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लिहाजा मेरे ख्याल में और ख़ासकर सोशल मीडिया में नौजवानों की जो आज यानी इंटरनेट जनरेशन जो आज हमारी है वो भी इस थीम का एक हिस्सा है। तो हम कैसे उनकी जो ख्वाहिशात है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, वो जो हासिल करना चाहते हैं आज और कल, यानी मुस्तकबिल के, न सिर्फ ये कि आज क्या हासिल करना चाहते हैं बल्कि इस तरह से प्लान करें, इस तरह से हमारी प्लानिंग हो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में या दीगर जो मवारिद है या दीगर जो हिस्से हैं माशरे के, उनमें इस तरह से हम अभी से प्लानिंग शुरू करें ताकि उनकी ख्वाहिशात की तकमील में हम मुआफिक साबित हों, समाज उनकी तकमील ख्वाहिशात की तकमील में मुआफिक साबित हों, हमारी प्लानिंग उनकी ख्वाहिशात की तकमील में उनकी मदद करे। क्योंकि एक टेंशन का हम बिल्ड होता है एक नौजवान के लिए कि जब उसकी एस्पिरेशन अंदर दब के रह जाती है, तो ख़ास करके ये जनरेशन, जैसे अर्ज कर चुका हूँ कि हम एक जो जदीद हमारी जनरेशन है वो एक मुख्तलिफ जनरेशन है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर लेवल मीडिया की तरफ है, उनकी इल्मी इस्तेदाद जो है यानी कम से कम एजुकेशन की सतह पे बहुत बुलंद है, यानी अगर हम दो जनरेशन पीछे जाएं तो अगर हम उस वक्त की लिटरेसी रेट देखें और आज की लिटरेसी रेट देखें, इसमें तो जमीन और आसमान का फर्क है। लिहाजा इनकी तवक्कात हमारी तवक्कात से मुख्तलिफ है, तो पहले हमें उन्हें समझना पड़ेगा, इस जनरेशन के मेंटल मेकअप को समझना पड़ेगा, फिर उनकी एस्पिरेशंस को देखना पड़ेगा। हमें यह भी देखना है कि वो एस्पिरेशंस जो है किस हद तक मटीरियलाइज हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि इन्हें ख्वाब दिखाने पर, वो भी वो ख्वाब जो हकीकत में यानी जो ताबीर जिनकी हो सके, पहले इन्हें ख्वाब दिखाना जो है वो सिखाइए और बाद में ख्वाबों की ताबीर के लिए जद्दोजहद करना सिखाइए और बाद में साथ में उसके साथ साथ निज़ाम को ऐसा तैयार करें यानी सोशल इकोनॉमिक सतह पे वो जो इनके ख्वाबों की उस ताबीर में मुआफिक साबित हो, इनकी मदद करें। तो ये आज की दिन का मखसूस थीम है। तो आज का सारा फोकस इस दिन का जो है वो नौजवानों पर है।
1: डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर पे इस दिन के हवाले से आप सामईन किराम को क्या मैसेज देना चाहें?
0: मैं सामईन और बिलखसूस नौजवानों को, एक टीचर हूँ मैं, तो ये कहूँगा कि सबसे अहम बात जो है वो आज के दिन के हवाले से पहले हमारी कॉन्शियंस को हमें बेदार करना, हमें अपनी अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारियां समझनी है। खुदगर्जी ठीक भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ना हो, यानी अपने आप के तई सोचे, अपने बारे में सोचे, मगर ये ख्याल रखें कि आप अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि एक इंसान की हैसियत से आप माशरे के हर हिस्से से जुड़े हैं, दूसरे इंसान से जुड़े हैं और दूसरी जो हमारी जो स्पीशीज हैं या जितना जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारी इकोलॉजी है, हमारे दरिया, हमारे खेत, हमारे मैदान, हमारे पहाड़, आप सबसे जुड़े हुए हैं, यानी ये सब एक इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले नहीं है दुनिया में, तो आप जो काम करेंगे उसका असर माहौल पर पड़ेगा और माहौल आपको वही वापस करेगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। तो जितने कॉन्शियस आप होंगे, जितने आप मुनसिफाना तरीके से वसाइल का इस्तेमाल करें, नौजवानों से मैं बिलखसूस कहूंगा कि उतना आप उसके फायदे खुद देखेंगे कि वो आपको मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस आज अब देखें तालीम तो बहुत बढ़ गई है लेकिन कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं अभी भी लैक कर रही है। तो खाली मालूमात से हमारे मसले हल नहीं होंगे, हमारा बाज़मीर होना, कॉन्शियस होना और कॉन्शियंस को बेदार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे निज़ाम तालीम में भी ये बात आ जाए, मैं खुद से ये पहले कहता हूँ बतौर टीचर, पहले मुझ में ये अवेयरनेस आ जाए, पहले मैं इस लायक हो जाऊँ कि मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को इसके लिए तैयार कर पाऊँ, तो पहले खुद अमल करूँ फिर स्टूडेंट्स को अमल की तहरीक दूँ। तो ये बात है जो मैं उनसे कहना चाहूँगा आपके साथ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद मकबूल साहब, आप प्रोग्राम में आए और वर्ल्ड पॉपुलेशन के हवाले से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सामईन किराम को। उम्मीद है सामईन किराम आपकी इस दी हुई जानकारी से और आपकी नसीहत से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया
1: सामईन किराम। इसके साथ ही आज के इस پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ رحمان

जय हिंद आदाब फौजी भाइयों, पहले निशिस्त के प्रोग्राम के साथ हम हाजिर और आप सबका स्वागत इस्तकबाल।

जी फौजी भाइयों, उस्ताद राशिद खान को सुन रहे थे आप फिल्म जब वी मेट से, इरशाद कामिल के बोल।

जी फौजी भाइयों, इस वक्त जो सौगात आप तक पहुंच रही है, इसको हमने चुना है फिल्म मौसम से, आवाज़ उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान की।

फौजी भाई इस वक्त नगमे समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। श्रेया घोषाल की आवाज़, फिल्म जब वी मेट।

फौजी भाइयों, इस वक्त आप नगमे सुन रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। अभी आतिफ असलम की आवाज़ आप सुन रहे हैं फिल्म टाइगर जिंदा है से।

0: फौजी भाई इस वक्त अपना प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। फौजी भाइयों, आपका प्रोग्राम जारी है, यहाँ रुकते हैं एक तजारती वक्फे के लिए।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
3: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
2: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
3: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: फौजी भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और अगली आवाज जो हमने चुनी है यह अरिजीत सिंह की फिल्म ए दिल है मुश्किल से।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। आइए अब उर्दू और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवा

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। साल 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तआवुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पांचवें और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को तौसी देकर दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दो तरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया। ये फैसला ऑकलैंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक, अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी तआवुन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दो तरफा लॉजिस्टिक्स मदद का मुआहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह किया, जिससे एक आज़ाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई उनके मुश्तरका अज़्म का इयादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालिमियत और उसूलों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन, जामे और बाहम फायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती मुआहिदे की तकमील और इस पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मुआहिदे को जल्द अज जल्द लागू किए जाने और इस पर मुअस्सर तौर पर अमल किए जाने को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते रिश्तों के लिए न्यूजीलैंड में भारतीय बिरादरी का अहम रोल है। ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं।
1: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी फर्द की शख्सियत को बनाने में लाइब्रेरियों की अहमियत को उजागर करते हुए मुल्क की नौजवान नस्ल से कहा है कि वो लाइब्रेरियों का इस्तेमाल करें। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और कौमी लीडर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अहम खिदमात पेश की थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क को और उसके लोगों को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रिवायती

0: आई सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजियों को मजबूत करके एक ताकतवर, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फोर्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें हो सकता है कि मस्नूई जहानत और दीकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लड़ी जाएं, लेकिन बिलाखिर वो बहादुर सिपाहियों और बासलाहियत फौजी ताकत के साथ ही जीती जाएंगी। छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मशरकी बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IND महेंद्रगिरी को शामिल किया जाना भारत की बहरी ताकत और मुल्क में ही तैयार करने की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की सम्त एक संगे मील है।
1: समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी एक लाइफ लाइन। आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामानिकारों से बात करते हुए जनाब गडकरी ने बताया कि शराकतदारों ने सड़क, रेल, फजाई और आबी ट्रांसपोर्ट को कार्बन के बगैर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और मुतबादल बायो ईंधन और आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजियों को अपनाने पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ज्यादा मजबूत, लचकदार और पायदार ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजियां और इख्तिरात का तबादला किया जा रहा है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रांसपोर्ट वजरा ने भी इस मीटिंग के दौरान अपने ख्यालात और बयानात पेश किए। रेलवे और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को एक बड़ा तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का हब बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद को बुलेट ट्रेन के साथ पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ जोड़ने की तजवीज रखी गई है। हैदराबाद में एक सनती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार रेल नेटवर्क सफर के वक्त को कम करेगा और जनूबी भारत के बड़े इक्तिसादी मरकजों के दरमियान कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तूफान बावी आज मशरकी बुहेराए चीन में शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बाइस जापान के जनूबी जजायर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि ताइवान और मशरकी चीन तूफान से निमटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 144 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल रफ्तार वाली हवाओं के साथ इस तूफान के बारे में पेशगोई की गई है कि ये चीन के सूबे जेजियांग में कल सुबह सवेरे खुश्की से टकराने से पहले ताइवान के शिमाल से गुजरेगा। हुकाम ने समंदर में तुगयानी और बुलंद लहरों की वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से जापान के ओकिनावा सूबे में 200 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं और स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत साउथैम्पटन के यूटिलिटा बोल में T20 बैनुल अक्वामी सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड 3-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। फीफा आलमी कप में दीकर क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मयामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसस सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सामिन चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं।

समीन अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ें आपने सुनी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, खयाम के मौसीकी और गुलजार के लिखे बोल।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आप सुन रहे हैं फिल्म आन मिलो सजना से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी और आनंद बख्शी के दिए बोल, और ये इस प्रोग्राम की आखिरी सौगात।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर्स और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप समाप्त करेंगे प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद, आदाब फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, दूसरी निशिस्त के प्रोग्राम के साथ हम हाजिर और आप सबका स्वागत इस्तकबाल करते हैं।

तकदीरें बदल जाती हैं, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता।

कहते हैं कि किसी को अगर आप शिद्दत से अपनी सारी ईमानदारी से चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो पूरी कायनात इसे आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है।

0: फौजी भाई अपना प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। फौजी भाइयों, आपका प्रोग्राम जो है जारी है, यहाँ पर रुकते हैं एक तिजारती वक्फे के लिए।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: फौजी भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंसान ही इंसान की दवा होता है। अगर कोई दुख देता है तो वही कोई सुकून भी बन जाता है। कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर ये हिसाब बराबर कर जाता है। कोई रुलाता है तो वही मुस्कुराने की वजह बन जाता है। अगर कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो वही कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा भी बन जाता है।

जिंदगी कभी कभार रेगिस्तान की मानिंद हो जाती है, जिसमें हम फिर ढूंढने लगते हैं साए, ठंडे ठंडे मोहब्बतों के साए, जुलसती जिंदगी को राहत दे देते हैं ऐसे साए अगर मिल जाए तो। और फिर कई बार यकीन करते हैं कोई तो दिन ऐसा होगा जब जुलसते हुए सहरा को रिमझिम मिलेगी।

फौजी भाइयों, आज की निशिस्त में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी रह गुजर पर, बस यहीं कहीं। जब तक के लिए जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 3:50 हो गए हैं। आइए आकाशवाणी श्रीनगर से सुनते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब। ये

आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके अहम मनसब के दरमियान आला सतह की बातचीत। 2030 तक सालाना तिजारत को 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का दोहराया अजम। अब तक 2,20,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। एलजी मनोज सिन्हा ने बालतल में यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का लिया जायजा। भारत एक मुस्तकम खुद इनसार और मुस्तकबिल के लिए तैयार। दिफाई फोर्स कायम करने का वादा बंद वजीर दिफा। और आबादी का आलमी दिन आज। पेश है खबरों की तफसील। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों और शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाते हुए 2030 तक अपने दो तरफा सालाना तिजारत और खिदमात 35,000

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आईदा पहाड़ी प्रोग्राम केंद्र के में आतुस्ता मेजबान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम विच जी आया क्वाखता उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक हो सो ते प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुन दे सामीन आबादी दा आलमी दिन हर साल अज यानी 11 जुलाई को मनाया गेंदा है। इंसान की इब्तदा थी 1800 ईस्वी तक इंसानी आबादी को 1 अरब होने बिच हजारा साल लगे। फिर 1920 की दहाई बिच आबादी 2 अरब तक पहुंच गई यानी दुगना होने को सिर्फ 100 साल लगे। इसके सिर्फ 50 साल बाद 1970 की दहाई बिच और दुगना हुई ते 4 अरब तक पहुंच गई। तिहाड़े तो तिहाड़े आबादी बढ़ती जुलती है ते अजकल एक दिन बिच 2.5 लाख आबादी इजाफा कर रही है। इस नजरिए दे मुताबिक आबादी बिच इजाफा वसाइल उते बारह का बायस बनता है। सामीन गल्लां और भी सांझियां करसा ते आओ प्रोग्राम को अगे बधेंदे होया सैयद मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज़ भी सुनते हैं एक गीत।

0: जी सामीन अनायतुल्ला खान पेश कर रहे से गीत ते सामीन दुनिया दे मुझ सारे मसले आबादी दे बादे नाल जुड़े दे तमाम बुनियादी सहूलतां और बुनियादी चीज़ां घटदियां जुलदियां हैं। आबादी दा आलमी दिन मनाने दा मकसद आबादी बदने नाल पैदा होने वाले मसलियां दा हल तलाश करना है। ते सामीन आओ प्रोग्राम दे आखिर ते आरफ नाज दी आवाज़ विच सुनदे आं ए गीत।
1: लगे तीर फिराक दे विच सीने

0: मोदी और इन्हां दे न्यूजीलैंड दे हमनसब क्रिस्टोफर लॉकसंत विचकार ऑकलैंड विच हुई गलबात तो बाद होया। गलबात तो बाद एक मुश्तरका बयान विच दोवां लीडर्स नूं आख्या कि इन्हां सुन भारत इंडो पैसिफिक दे मौजू ते गलबात कीती और इन्हां आजादाना और तरक्की याफ्ता खित्तियां वास्ते काम करने दे आज़म को दोहराया। दोवां लीडर्स नूं इंडिया न्यूजीलैंड आजादाना तिजारत मुआहदे FTA ते दस्तखत कीते जुलने दा खैर मकदम कीता। इसी दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन आख्या कि दोवां मुल्खां दे विचकार बढ़ रही शराकतदारी विच न्यूजीलैंड विच भारतीय बरादरी एक अहम रोल अदा कर रही है। ऑकलैंड विच भारतीय बरादरी नाल खिताब करदे हुए उन्होंने सुन आख्या कि दोवां मुल्खां सुन एक दूजे वास्ते मुसारे मौके खोल छोड़े हैं और एक शराकतदारी को म्यार दियां बुलंदियां तक पहुंचाण दे वादा बंधन।
1: हर युग में हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह सुन आख्या है कि भारत रवायती दिफाई सलाहतों और जदीद टेक्नोलॉजी को डेढ़ा करते हुए एक मुस्तकम खुद इनहिसार और मुस्तकबिल वास्ते तैयार दिफाई फोर्स कायम करने वास्ते काम कर रहा है। विशाखापट्टनम विच अज INS महेंद्र गिरी को ईस्टर्न फ्लीट विच शामिल करने वास्ते मुनाकिदा एक तकरीब तो खिताब करते हुए वजीर दिफा सुन आख्या कि आत्मनिर्भर भारत नजरिए के तहत भारत टेक्नोलॉजी और रवायती मिलिट्री सलाहतों को मरबूत कर रही है। उन्होंने सुन आख्या कि भारत तो दिफाई दरामदात ते इनहिसार नाल अगे चुल के लोगों की हुनरमंदी और इख्तराइयत की बदौलत जदीद मिलिट्री साजो सामान तैयार कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या कि इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पुलिस फौज नीम फौजी दस्तूं तय और बाकी कुछ नाल दे इदारियां दे इश्तराक नाल यात्रा दे अमन महफूज और असल इनकाद वास्ते सारे इंतजाम कर छोड़े दे। बलताल बेस कैंप दा दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा दे इंतजामां दा जायजा लेंदे होए अलजी सुन उत्थे मौजूद यात्रियों नाल मुलाकात भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन रेणे सफाई तिबी सहूलतां और बाकी बुनियादी इंतजामां दा मुआयना कर आख्या कि बालताल और चंदनवाड़ी विच कायम 100 बिस्तरां ते मुश्तमिल अस्पताल यात्रा को मियारी तिबी खदमतां देंदा है।
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर है वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
0: इसी दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दुआ रवायती रवा तो कुछ असलूबी नाल जुल रही है और अजो तिकर 2,20,000 तो ज्यादा यात्रियों सुनपुत्र गुफा पिच हाजरी दिती। यात्रियों की इतनी बड़ी तैदाद को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन एक सोशल मीडिया पोस्ट विच आख्या कि इतनी बड़ी तैदाद भी श्रद्धालुओं की हाजरी बाबा बर्फानी के तय श्रद्धालुओं के अकीदे की अकासी करती है। इसी दौरान जम्मू तय भगवती नगर बेस कैंप थू आज 9,182 यात्रियों मुश्तमल एक और काफिला वादी पहुंचे जिन्हों 3,305 यात्री बालताल जदू के 5,877 यात्री पहलगाम दे रहा यात्रा कर रहे हैं। वजीर विच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और कुछ महकमे ते एजेंसी सुन यात्रा दे असल इनकाद वास्ते सारे इंतजाम किए गए और यात्री मजमुई तौर पर इंतजाम और इतने के मजमानदारी थू मुतमईन हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस 2023 बैच के ट्रेनी अफसर के एक ग्रुप सुन अज लोक भवन श्रीनगर विच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दे नाल मुलाकात की। इस मौके पर LG सुन उभरते हुए अवामी इतलाती मंजरनामे और समाज विच वक्त इतलात की फरहमी की अहमियत पर जोर दिता। उन्होंने सुन ट्रेनी अफसर पर जोर दिता कि वह लगन और हिसासियत नाल काम करन। इन्हां दे नाल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के डायरेक्टर काजी सलमान भी आसे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन श्रीनगर विच कश्मीर मैराथन के तीजे शुमारे वास्ते ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाबकुशाई की। ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाबकुशाई के नाल ही मैराथन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुल गया है। वाजे रहे जी मैराथन अक्तूबर के महीने विच मुनक्कद हो सीगा। इस दौरान खिदमत सेंटर एसोसीएशन का एक वफद सुन उमर अब्दुल्ला के

ना बस तुम अयाल के पाला भी ना, तुम रुपए चार कमा भी ना। और असल चीज हो तुम हलाल मेहनत, हलाल रोटी रोजी कमा भी ना, मेहनत मशक्कत थी ना, तो बस उम्मीद नीचे उनकी कोई देश गाओ गाओ गोराइट बास के जाकिन से बास को से बास के सादे खूबसूरती ट्रकिन और असी कोई वो न फरिया कोई जुड़ो जी है टूरिज्म असीना से तुम रुपए चार कमा। लेकिन बुढ़ू चल मसानी में दलील थे कि यकीनन असु टूरिस्ट कोई उधर उठू चाहे सो जम्मू कश्मीर जो यू या हिंदुस्तान जो यू सो एक मनाट बनो जी इलाके जो यू और असुट पजे से सी हर तरीके खिदमत हुई हर तरीके पजे से सी असल हिसाब पेश हुई प्यार मोहब्बत पेश हुई सेड असल हिसाब से सिनाला बिहुनी से सिनाला खोजन तापन थी क्योंकि छोट पता है बेबूटू पता है जम्मू कश्मीर कोई कश्री कोई जगह से मनाट लाइक इज्जत देना से चाहे सो मनाट कोई किना से सो सिजनों ना सुनते नहीं सो सिजनों ना सुनते नहीं लेकिन सेट ही गुटमार की हर एक का इज्जत थी और अस्टेक पजे भी इज्जत व रिवायत कोई बरकरार छ क्योंकि कोर्ट बस रिवायत बरकरार छ यकीन असु टूरिस्ट कोई नाद में मनाट कोई बोझ सो यकीन वो इंसानी तारीफ के थी वो जखू के तारीफ थी इलाके की तारीफ थी कि कदा जखा बस चुन बड़ सी या दरी नसी ना कोई हिस्सा भी पेश ना। लेकिन सामिन बड़ी एक बदकिस्मती आ गई पति ने जो एक देश बिल सोशल मीडिया जी की बेस्ट रखी है सब बारे वीडियो के मतलब अपलोड बिल और जाती तौर के वो चीज उम्र तजुर्बा बोलो कि असी कोई ना जा खास मतलब थोड़ा बहुत खून पीने जला गए जुलम थी ना रेटूज क्योंकि बेस्ट रखू उनकी एक से अगर इंसान से रुपए करोड़ अगर इन्वेस्ट हो चलो एक होटल वालों सो उस माँ बुझ चीज उम्मीद थी उनकी एक कलो सीजन मुझने रुपए करोड़ को ये वसूल थे अगर वो सोच है तो यकीन उस रुपए चार कमा हुई बेशक से कोई शक नहीं लेकिन उस अचाक के बोझ उम्मीद थी उनकी अगर अश उस एक और एक टूरिस्ट अगर बाई गए खाली बाई दाल शाह कोई अगर मोजा वगैरह अगर रुपए पोशल और फैशल और अचाक के बस उम्मीद बची कि वो टूरिस्ट लोग बस कुछ उन वाल नहीं जंग जंग क्योंकि बस दोनों कोई बिजनेस हो अखी खराब ने बोझ थी जंग जंग सेट रखिए बिजनेस से तो बस को याद हूँ कोने हर एक चीज हो हर एक चीज एहतदाल जस बस नहीं रंग कि तुम कोई टेंट वाल हो या कोस मतलब ना दे जे खून पीने आइटम क्रीन हो बाकी जे कोस से जाए सो तुम रुपए चार नहीं बच कोई बिल्कुल कमाए बच क्योंकि ससु कार ही बोलूं सो बेचारे अकी आस हो या मुत दो ना पाई मुलाजिम छिरे यूं गो मतलब कोस वे हाउस कीपिंग थी या शर थी ना बस रोने ना लेकिन वो मतलब एक वो जुल्म नहीं बोझने थी उनकी अगर रुपए दू शालो या ट्रे शालो उस वे खून पीन दे तो सदे बोझ उस रुपए सास वैठन चलो अगर दू शालो खून पीन दे ट्रे शाल रैठन उस शाल रुपए अकूट बस वे मुनाफा जरूरी हूँ लेकिन अदाग नहीं था सो उसकी कोशिश टूरिस्ट से पात अखी के वीडियो खाले पूर गोराई कोई लान तान थे वो एक सरान चिंदा से एक छुम कोई से जुग तालाब मकुर थी इंदा तो अगर एक नफर से अगर ये गलती थी सुबह जुग अलाकी जग को वो सू ज्यादा जीना इसलिए मुझे गुजारिश थे मुझकी सो तुम रुपए चार के जीना तुम बिजनेस के देश गो को बढ़े गया लेकिन ससी करो जे एक उसूल आसना उसूल आऊ कि जुल्म ने बुझ बीन जंग मुनि कटार सुस ने बयाता कोई ना दारी ने या कशीर कोई गिना क्योंकि बस ही पत्नों असी बदनामी भी जुक अलाकी बदनामी भी इसलिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन तक ने गुजारिश थे मुझ किसे थोड़ा बहुत वो चीज नजर गुजर पजी थी उनकी कोई जाखा कोस खून पीन देना सो मयारी हूँ साफ सुथरा हूँ फिर लाई रेटे कर देना क्योंकि रह गया टूरिज्म में हूँ एक बर्री कर रू अनुक सीजन ही करूँ सो रैया 2026 से आलो काल से पता ना टूरिज्म बंद भी इतना जुक दिन इसलिए टूरिज्म कोई एक वो रिलेशन एक रिश्ता को कदत बस तुम गोल जो रिश्तेदार इतने चाहे सो दादू तरफ हुआ सो दादू तरफ हुआ सो मालू तरफ हुआ सो या मालू तरफ वो एक बड़ो रिश्ता बने जो देश गा को पात्र हो गो वो रिश्ता कोई उसे बड़े भी जो इंदा तो असु वो टूरिज्म टूरिज्म के देश गा को कम नहीं भी जेंग सामी वो भी बस के अलबत्त से सी कर अस्टेग थोड़ा बहुत हो वो चीज एहसास थी क्योंकि अगर असुटे तो हम टूरिज्म असना जुड़ा जी दारी ने रुपए चार में छूट कमाने तो असु ने पजे जुलम थी जंग जंग खून पीन ने पजे जुलम थी या कोई बस कमरा किराए उस दोनों सजिंग ने पजे जुलम थी अगर बस वो चीज सम हिसाब छिरी असल हिसाब उसूल उठा दिया थे तो मोट पूरी उम्मीद ही असु कोई गुराई टूरिज्म हो सो देश गाँव को बढ़ी और थोड़ा बहुत इनिशिएटिव का असु टूं टूं तो हम कोई गुराई जी मिसाल और था फिर था अश पूजू के पढ़ाई ने वन थोड़ा चक्कर को कर एक देनू या एक जब चाय स्टाल एक कहो स्टाल एक पीनू या तुम कोई हैंडीक्राफ्ट हो कोई बिज बनाऊ ना हाथी सनु बारे थोड़ा एक जाए स्टाल एक भी तुम रुपए चार कमाई इसलिए वो बुढ़ जो बड़ो असल इंद असल चीज या वे अगर वे चीज अगर भी तो यकीन असू टूरिस्ट कोई असू मतलब कोई पढ़ा लिखा

उसो खाली नेदार कैंप साइट डंग या सुनेदार टेंट डंग होटल आई डंग सिस लाज एक थ्यूनी करू मतलब क्रम करू या टूरिस्ट गाइड मतलब सो बेचुन को रुपया चाह तो मैं कमर असल हिसाब सो मेहनत थे मशक्कत थे यकीन मोट उम्मीद कि अल्लाह ताला से पतन इंसान पन पछायु लेकिन अल्लाह ताला को वो चीज बिल्कुल खुश नहीं कि सो मतलब जो सिन अल्लाह जुल्म थे ना इंसाफी थे इसलिए मतलब वो चीज मोट उम्मीद ही कि मोरू जरूर अमल थे हर एक कोई दारू टू टूरिस्ट उसे सो बड़ो असल हिसाब बड़ो मतलब इज्जत प्यार मोहब्बत सो मतलब इंसान अल्लाह हूं बिन भी मन ताकि वसिक बुझ रजन की नेवा गुराई या कचाक असल आ तो साथ साथ मुत एक चीज गुजारिश तम सामीन सो ही कि छोटे पता है कि कोई असि गोरा जी टूरिस्ट ना असु माहौल सुख खतरा आस असु चाहे सो मतलब असु दरिया वैशुतन असि उसे अशुतन या असि बाकी दिशा अशुतन कोई असि टूरिस्ट बोझना माहौल खास ख्याल छिरुनु क्योंकि बेटा कौन को अगर टूरिस्ट बस की ना माहौल खतरा पे क्योंकि खून पीन फालतीन से मोम जामी प्लास्टिक बोतल या बाकी चीज अंधाधुन दर्द वो चीज हुई सेंटिक बड़ प्यार मोहब्बत रजुन की मतलब सो कोने ब्याह था दिशे सो साफ छिरने कोशिश था या बैठो कौन कैंपिंग साइट को हर एक पजे तुम डस्टबिन लुक्सा दे चुन या कुछ ये अगर जी खून पीन क्लीन असन पजे तुम वो रेडे के तुम डस्टबिन लुक चुन ताकि खेक पेक वो डस्टबिन वीन ताकि पत असल हिसाब सो सो ब्याद असल से दिशु फाल थी कुने मतलब नुकसान ने भी कुने बीमारी ने चुकी या कुने बाकी चीज और नुकसान ने पे जेंगे क्योंकि छोटे पता ही गोरा ये खूबसूरत इलाका हूँ अगर बेचने वो चीज सामिन ख्याल नहीं छिरी अंधाधुन मतलब मुख्तलिफ चीज फल थी पन पन या कैंपिंग साइट हुई तो सो सोचा कि असी गोराई एक हुई ट्रकी तजद हाल हाल ही वे जिग बस एक ट्रक सो चीज जाती तौर तजुर्बा की थी अक्सर बेसर पे दिशु चक्कर अड़बा कर बाकी जो बुझनो माहौल ट्रकियों ने कार्य जो को अंदा दिन बोतल दारे दे कुरकुरे ले चुप जो को खोना मतलब सनी मोम जामी दारे दे बाकी पॉलीथीन दारे दे एडमिनिस्ट्रेशन के सो ही एडमिनिस्ट्रेशन टिक कोई हरकत एक जिकने पे जन जन सनी राय बेबसदाई बजू थे चार बजे आपसा जनस असी जिम्मेवारी इंजा कर इन्हें ने बिल्कुल ने सुन पाजे कम से कम चेक थी नहीं कि कोई टूरिस्ट साइट है हिस्सा दे गलत खुर में जे कोर पे हूं बे हूं या साफ सफाई ख्याल हूं दा साफ सफाई छरीन हाँ दा को साफ सफाई नहीं छरे सुन थिए फाइन ताकि पूरी फाइन क्योंकि गोराई साफ ही तो खूबसूरत हो को तो टूरिस्ट हूं नहीं तो गोराई अगर कोई गंदा पे इनू सो गोरा जाए छोटू ढेर बने हुए ना ये टूरिस्ट जोग थी सो इन्हें छोट ट्रक है गोराई जी की ट्रक छोट सो दारूर ट्रक इसलिए अगर सो साफ सफाई छिरियात हो को तो असो को टूरिस्ट हो सो तेज गावो ना देगा यही।

0: सामईन, अभी आप शीना प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे शहनवाज सामून।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन, शाम के 5 बजे हैं। पेश है आज का गोजरी प्रोग्राम।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना समीन ना थारा मेजबान शौकत अमन बोकड़ा का तरते तम सारा ना प्यार खलूस ते तजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मन पसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होएगा। समीन इकराम अज 11 जुलाई है ते तुहानू दस्सदा चलूं कि अज पूरी दुनिया में वर्ल्ड पापुलेशन डे मनाया जा रहा है। इसे दिन का हवाला नाल मारे कोल एक गलबात भी है या गलबात भी थारी

जीते सामीन इसके नाली महाराज का गोजरी प्रोग्राम को वक्त मुके लगो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, अपना मेजबान शौकत अमन बोकड़ा। अगली मुलाकात दे इजाजत। अच्छा जी, राब राखो।

सामईन, आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे शौकत अहमद बोकड़ा, पेशकश वसीम फारूक।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सामईन, शाम के 5:50 होने वाले हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर उनतम गोजरी में खबर सुनो। पहला अहम खबरों की सुर्खी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड का इनका हम मनसब का बिचकार आला सतह की गलबात। 2030 तिकर सालाना तजारत ना 35,000 करोड़ रुपया तिकर पहुंचान को दोहरायो अजम। उन तिकर 2,20,000 तो ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। LG मनोज सिन्हा ने बालतल में यात्रियों वास्ते किया गया इंतजाम को लियो जायजो। भारत एक मजबूत खुद इनसार और मुस्तकबिल वास्ते तैयार दिफाई फोर्स कायम करने की वादा बंद वजीर दिफा। ते आबादी को आलमी तैयारो आज। हुन पेश है खबरों की तफसील। भारत और न्यूजीलैंड ने अपना रिश्ता और शराकतदारी नई बुलंदियों तिकर पहुंचान। 2030 तिकर अपना दो तरफा सालाना तजारत और खिदमात 35,000 करोड़ रुपया पहुंचान को निशाना मुकर्रर कियो है। यह पेशरफ्त आज वजीर अजम नरेंद्र मोदी और इनका न्यूजीलैंड का अपना हम मनसब क्रिस्टोफर लगजन के बिचकार ऑकलैंड में गलबात के बाद हुई। गलबात के बाद एक साझा बयान में दोनों लीडरों ने क्योंकि उनने भारत बहर अलकाहिल का मौजू पर तबादला तो ख्याल किया और एक आजादाना और तरक्की याफ्ता खिता वास्ते काम करने का अजम न दोहराया। दोनों लीडरों ने इंडिया न्यूजीलैंड आजादाना तजारती माहिदा FTA पर दस्तखत करने को खैर मकदम कियो। इसे दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहो कि दोनों मुल्कों के बिचकार बढ़ती शराकतदारी में न्यूजीलैंड में भारतीय बरादरी एक अहम रोल अदा कर रही है। ऑकलैंड में भारतीय बरादरी ना खिताब करता हुआ उन्हें कहो कि दोनों मुल्कों ने एक दूजा वास्ते बेशुमार मौका खोल दिता है और ये शराकतदारी ना मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने की वादा बंद है।
2: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को

0: ट्रांसफॉर्म किया है
1: और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
2: इससे बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड को दो रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया और वे वतन वापस पहुंच रहे हैं। जो 40 साल में भारत का किसी भी वजीर आजम को न्यूजीलैंड को पहला दौरा है जिसकी बदौलत दो तरफा रिश्ता ना बढ़ावा हासिल

0: पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
1: इससे बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड को दो रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया और वे वतन वापस पहुंच रहे हैं। जो 40 साल में भारत का किसी भी वजीर आजम को न्यूजीलैंड को पहला दौरा है जिसकी बदौलत दो तरफा रिश्ता ना बढ़ावा हासिल हुआ है। नरेंद्र मोदी ने बेमिसाल मेहमान नवाजी वास्ते न्यूजीलैंड का वजीर आजम को शुक्रिया अदा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रवायती दिफाई सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी ने मजबूत करता हुआ एक मुस्तकम खुद इनसार और मुस्तकिल वस्ते तैयार दिफाई फोर्स कायम करने वास्ते काम कर रहे हैं। विशाखापट्टनम में आज INS महिंद्रा गिरी ने मशरकी बेड़िया में शामिल करने वास्ते मनकदा एक तकरीब तो खिताब करता हुआ वजीर दिफा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत नजरिए के तहत भारत टेक्नोलॉजी और रवायती मिलिट्री सलाहियतों ने मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत उन दिफाई दरामदाद पर इनसार आगे बढ़ के लोगों की हुनरमंदी और इख्तराइत की बदौलत जदीद मिलिट्री साजो सामान तैयार कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पुलिस फौज नीम फौजी दस्तों और दीगर मुतलका इदारों का इश्तराक नाल यात्रा का पुरअमन महफूज और आसान इनकाद वस्ते जामिया इंतजाम किया गया है। बालतल बेस कैंप को दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा का इंतजाम को जायजा लेता हुआ LG ने उत मौजूद यात्रियों नाल मुलाकात भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिहायश सफाई तबी सहूलियात और दूजा बुनियादी इंतजाम को मायनो करता हुआ क्योंकि बालतल चंदनवाड़ी में कायम 100-100 बिस्तर पर मुश्तमिल हस्पताल यात्रियों ने मियारी तबी खिदमात फराम कर रही हैं।
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहाँ धार्मिक महत्व है मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है। सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया। फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए ये व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
1: इसे दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दुआ रवायती रावां तो कुछ सलोबी नाल जारी है और उन तिकर 2,20,000 तो ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी थी। यात्रियों की इतनी बड़ी तादाद का तनाजर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की हाजिरी बाबा बर्फानी वस्ते श्रद्धालुओं का अकीदा की अक्कासी करे। इसे दौरान जम्मू का बगवनी नगर बेस कैंप तो आज 9,182 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफलो वादी पहुंचे जिन बिचो 3,305 यात्री बालतल जबकि 5,877 यात्री पहलगाम का राह यात्रा कर रहे हैं। वाजह रहे कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और दीगर महकमा तथा एजेंसियां ने यात्रा का आसान इनकाद वास्ते तमाम इंतजाम किए हैं और यात्री मजमुई तौर पर इंतजाम और ईद की मेहमान नवाजी तो मुतमिन हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस 2023 बैच का ट्रेनी अफसरों का एक ग्रुप ने आज लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नाल मुलाकात की। इस मौके पर LG ने उभरता हुआ अवामी इतलाती मंजरनामा और समाज में मुसदगा और वक्त पर इतलात के फरामी की अहमियत पर जोर दितो। उनने ट्रेनी अफसरों पर जोर दितो कि वे तनदेही लगन और हसासियत नाल काम करें। इनके नाल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर का डायरेक्टर काजी सलमान भी था। गोजरी में यह खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रही है। खबर तम आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सकें। बेगम अकबर जहां का 26वां योम विसाल का मौका पर आज नसीम बाग श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफों एक कन्वेंशन को इनकाद किया गया। इस मौका पर पार्टी का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खिताब करता हुआ कहा कि दिल्ली और कश्मीर का बिचकार एतमाद ब्रांड और दूरियां न खत्म करने की सीमत में काय अमली पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी आम लोगों की जमात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका हकूक का तहफ़ वास्ते काम करती रहेगी। इस तो पहला बेगम अकबर जहां का मजार पर कुरान खवानी और फातह खवानी की मजलिस मुनक़द हुई और पार्टी लीडरों और कारकुना ने मरहुमा का मजार पर फूल चाड़िया। इस मौके पर पार्टी का नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जो पूरी तौर बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार का वादा के बावजूद जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जो बहाल नहीं किया जा रहा है। एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूल एजुकेशन महकमा तो ताल्लुक रखने आला 539 मास्टर्स ना इंचार्ज हेडमास्टर के तौर पर UT का मुख्तलिफ तालीमी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों

0: की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: یہ آکاشوانی سری نگر سمین شام چھ بجے تو 5 منٹ سپد پیش گئی بائن ہند پروگرام
3: السلام علیکم فردوس صاحب
4: وعلیکم السلام اختر صاحب ولی حضرت تھے تشریف تو چھوا ٹھیک پڑھیں
3: فی الحال ٹھیک
4: ہے صحت اوسا ٹھیک
3: شکر خدا اس کن
4: او صحت و سلامت انسان یم سات انسان آسان تلے شو ملاقات سپدان حز تو یہ ملاقات چھ غنیمت آسان انسان است کیا اس اخت چوہ یو زن سہ قیمتی حس
3: بالکل
4: تو وقتس کی قدر کریں پریت وز پریت سات اتی ہکہ انسان بروٹ پکتھ تو یت تیز رفتار وقتس مزن امیک بھرپور فائدہ تلت حس
3: تو وقت سو اخ چیز حس یت نمتی حس تو اگر نس ات قدر کرو حس تو یہ اس پہ واپس تہ قدر کران کی بالکل تو اچھ کوشش کران زی اس گسو وقتس قدر کرن تو وقتس پٹھ سو کام کرن یوز زن سانی خاطر تہ ضروری آس تہ سانی سماج خاطر تہ ضروری آس
4: تو کولم پٹ یم سات سماج خوشحال آس لوک آسن خوشحال تلے چھ سرسی خوشحالی یوان تلے چھ اللہ تعالی تہ دیوان حس انسانس سو وات ہاوان یوز زن کامیابی ہنس چھ یوز زن کامرن ہنس چھ آسان حس ولیو سبد گڈ اس رب الکریم اس کن رجوع تلاوت قرآن مجید بوزو بے بوزو ہدی عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
3: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
4: بسم اللہ
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
1: अथ दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौन हूं दौरों मुकम्मल कोर्मुत तो तिम वतन वापस वातान। झतजी वर्यन मे भारत किस वजीर आजम सुन न्यूजीलैंड गोडनिक दौर यम कि दुतरफ रिश्तन पोछर मिलोमुत। नरेंद्र मोदी कोर बेमिसाल मेहमान नवाजी बापत न्यूजीलैंड किस वजीर आजम सुन शुक्रिया। बचाव वजीर राजनाथ सिंहन वोनमुत भारत रवायती बचाव सलाहियत तो नबीन टेक्नोलॉजी मजबूत कर मुस्तकम खुद इनसार तो इन कल बापत तैयार बचाव फोर्स कायम करने खातर काम करान। विशाखापट्टनम वोन आज आई एन एस महिंद्रा गिरी मशरकी बेडस में शामिल करने बापत मुनक्कद अकिस तकरीब खिताब करान बचाव वजीरन आत्मनिर्भर भारत नजरियास तहत भारत टेक्नोलॉजी तो रवायती मिलट्री सलाहियत मजबूत करान। तमों भारत वे बचाव दरामदात पे दारमदार ब्रो पकित लूकन हनरमंदी तो इख्तियत के बरकत नवीन मिलट्री साजो सामान तैयार करान। मरकजी दाखिल वजीर अमित शाहन कुतुब खानन अहमियत बतलावान नौजवानन अपील करम तम थवन मुल्कस मज कम लाइब्रेरियन सालुक युन तिज बेहतर शख्सियत सजी सपद तम आज नव दिल्ली में जय प्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरियन इफ्तिताह करान। तम आज नव दिल्ली में जय प्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी इफ्तिताह करान। अमित शाहन वो मुल्क किस तमीरस मज कुतुब खानन हुंद किरदार बतलावान जिंदी दश लूकन ताम सकाफत तो जदीद तलीम वातना। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पुलिस फौज नीम फौजी अमल तो दोमें मुतलिक इदारन हंद इश्तराक यात्रा पुरामन महफूज तो जान पट मुनद करने बापत बेहतरीन इंतजाम करम। बालतल बेस कैंप दौर कर श्री अमरनाथ जी यात्रा इंतजाम जायज हवान एल जी एन अति मौजूद यात्रियों सलाकात। एल जी एन वो रिहाइश सफाई तबी सहूलियत तो दोमें बुनियादी इंतजाम मुआन करान बालतल तो चंदनवारी कायम हथत बिस्तर पे मुश्तमिल हस्पताल यात्रियों मयारी तबी खदमत फराहम करान।
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर है वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
1: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा छह दशवई रवायती वतो जान पठ जारी तो वनिस तम दिश वह सास पेठ यात्री पवित्र गुफा मज हाजरी। यात्रियों हंदिस यीतिस बड़िस तैदाद के सिलसिलस मज वोन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किस सोशल मीडिया पोस्टस मज बड़िस तैदादस मज श्रद्धालुन हाजरी छ बाबा बर्फानी नस्बत श्रद्धालुन हंदि अकीद अक्कासी करान। ए दौरान वोत जम के भगवती नगर बेस कैंप पे आज नौ सास अखत दशीतन यात्रियों पे मुश्तमिल ब्याख कैफल वादी यमो मज त्रे सास त्रे हथ पांच यात्री बालतल ये जन पांच सास अठ शत सतसत्त यात्री पहलगाम वति यात्रा करान। तय पाव चत श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड तो दोमो महकमो तो एजेंसियो यात्रा बेहतर पे मुनद करने बापत तमाम इंतजाम करम तो यात्री कुलम पे इंतजाम तो ये मेहमान नवाजी बापत पूरे पे मुतमयन। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जुव बैच कैन ट्रेनी अफसर हंद ग्रुपन कोर आज लोक भवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सत मुलाकात। अत मौक पे दुत एल जी एन वतलवन अवमी इतलती मंजरनाम तो समाजस मज मुसदक तो बरवकत इतलात हजि फरहमी हंदिस अहमियत पे जोर। तमो ट्रेनी अफसर पे जोर जम कर चुकी सान तम सत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्री

0: जम्मू एंड कश्मीर
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: शेरबीर अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन वादी कश्मीर में आज सपेर से आसमान अबर आलूद होने के साथ ही बाज़ एक इलाकों में बूंदाबांदी जबकि बाज़ एक इलाकों में बारिश हुई। जम्मू खत्ते के बाज़ मकामात पर भी हल्की बारिश की इत्तलात हैं। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के चंद इलाकों में आज देर शाम तक बारिश होगी जबकि कल से पूरी वादी में बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शहरबीन को बताया कि वादी के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है जबकि जिला रामबन और डोडा खत्ते में भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती है।
3: मौसम जो है थोड़ा अबरालुद बना हुआ है आज सुबह से ही और बारिशों के चांस हैं, खासकर अभी वैली के अंदर भी, जम्मू डिवीजन के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, खासकर पीर पंचायत रेंज के अंदर, और कमिंग डेज में भी, खासकर कल से जो है, कल मॉर्निंग से ही एक दो स्पेल के चांस हैं पूरे वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीजन के भी काफी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर 13th ऑनवर्ड थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहेगा तो वेदर जो है थोड़ा ड्राई रह सकता है वैली के अंदर और जम्मू डिवीजन में थोड़ी हल्की बारिशें रह सकती है सुबह शाम।
4: आज और कल जो आप बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं किन डिस्ट्रिक्ट्स में या किन किन एरियाज में मुतवक्के हैं?
3: बिल्कुल, ये नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के यहाँ वैली के काफी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे और इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी, खासकर पीर पंचाल, चिनाब वैली और साथ साथ में रियासी, उधमपुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हल्की बारिशें हो सकती है। कुछ एक जगहों पे तेज बारिशें बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए भी देखी जा सकती है।
4: एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, कब से आप देख रहे हैं कि बारिश हो सकती है?
3: आज खासकर अभी बारिशें हो रही है कुछ एक जगहों पे, कुछ एक जगहों पे टिल इवनिंग तक रहेगा, उसके बाद फिर कम होने के चांस हैं। बाकी कल से जो है सुबह सवेरे से बारिशों के चांस हैं यहाँ वैली के अंदर और इस तरह जम्मू रीजन के अंदर भी, इंटरमीडिएटली एक दो स्पेल दिन के दौरान हो सकते हैं टिल इवनिंग।
4: गस्टी विंड और ज्वालाबारी का कोई इम्कान कहीं पे?
3: अभी फिलहाल नहीं है लेकिन गस्टी विंड थोड़े से चल सकते हैं।
2: ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर जिला इंतजाम किश्तवाड़ ने महकमा मौसमियात की पेशगोई के पेश नजर 14 जुलाई तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के इम्कान के बायस मौसमी एडवाइजरी जारी किए। आवाम से अपील की गई है कि वो दरियाओं, नदी नालों, लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतलिका महकमों को हंगामी सूरतहाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत दी है जबकि जिले कंट्रोल रूम को 24 घंटे फाल रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरी इमदाद और बचाव कार्रवाइयां अंजाम दी जा सकें। इस दौरान वादी कश्मीर के कई इलाकों में इन दिनों पीने के पानी की कमी के हवाले से लगातार शिकायत मिल रही है। सरहदी सब डिवीजन टंगडार के बेशतर देहात में पानी की सप्लाई बुरी तरह असरअंदाज है जबकि यहां किसानों को भी सिंचाई का पानी दस्तयाब नहीं। इशफाक सईद की रिपोर्ट।
5: सरहदी सब डिवीजन करना में पीने के साफ पानी की फरहमी आज भी एक बड़ा मसला बनी हुई है। हुकूमत की जानब से जल जीवन मिशन समेत मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, तहम मुतअद्दिद देहात के मकीनों का कहना है कि उन्हें अब भी बाकायदा और महफूज पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। हकीकत यह है कि गर्मियों के मौसम में कई देहात के लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए भी परेशान नजर आते हैं। करनाक का सुलेमान गांव, जो कभी 300 से ज्यादा कुदरती चश्मों की वजह से पूरे करनाक में मशहूर था, आज सुकड़ कर चंद दर्जन चश्मों तक ही महदूद होकर रह गया है। मकामी बुजुर्गों का कहना है कि इन चश्मों का साफ ठंडा और मीठा पानी आसपास के मुतअद्दिद देहात की जरूरत को पूरा करता था मगर जंगलात की कटाई, तजावजात, आलूदगी और मौसमी तब्दीली ने इस कुदरती दौलत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इधर हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत फिल्ट्रेशन यूनिट और नए पाइपलाइनें तामीर की हैं लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में सूरत हाल यह है कि घरों तक नल के कनेक्शन तो पहुंच गए हैं मगर नल खुश्क पड़े हैं या कई कई दिनों बाद महदूद मकदार में पानी फराहम करते हैं। बटपोरा के वार्ड नंबर 2 धनी सतपोरा, चनीपोरा, टंगधार, नैतिया, चिमारी, छमकोट, गुंडी गुजरा, द्रगढ़, बखाइया और दिगर बलाई देहात के रिहायशियों का कहना है कि हर साल गर्मियों के मौसम में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है। कई खानदान आज भी चश्मों और नदी नालों से पानी लाने पर मजबूर हैं। इसी तरह कई देहात जिनमें पैंतारा, पराड़ा اور دیگر شامل ہیں، وہاں لوگوں کو کھیتوں

0: की सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, जबकि सरहदी गांव सतपुरा के सैकड़ों कनाल अराजी पर फैले धान के खेत भी सूख रहे हैं, क्योंकि सरहद पार से आने वाला पानी भी कम मिकदार में पहुंच रहा है, जिससे किसान परेशान नजर आते हैं। तश्वीशनाक बात यह है कि नैचियां से टीटवाल तक कई मकामात पर नदी नालों में प्लास्टिक और घरेलू फुजला फेंका जा रहा है, जिससे कुदरती आबी जखायर आलूदा हो रहे हैं। मकामी माहिरीन का कहना है कि अगर इस रुझान को रोका न गया तो आने वाले वर्षों में साफ पीने के पानी का बुहरान मजीद संगीन हो सकता है। एडब्ल्यू जल शक्ति करनाब बशीर अहमद शाह ने शहरबीन को बताया कि गर्मियों के मौसम में पानी की मिकदार कुदरती तौर पर कम हो जाती है, जबकि जरी इस्तेमाल बढ़ने से बाज इलाकों में किल्लत पैदा होती है। उनका कहना था महकमा सप्लाई बहाल करने के लिए मसलसल काम कर रहा है और शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाती है।
1: ये थे टंगरार से इश्फाक सिद्ध। इधर जिला कुपवाड़ा के बेशतर इलाकों में इन दोनों किसान और मालिकानी बागात सिंचाई के पानी को लेकर परेशान है। इतलात है कि नदी नालों और सरबंदों में पानी की सतह काफी कम हो चुकी है और इस वजह से खेतों और बागात तक पानी पहुंचाना जुई शीर लाने के मुतरादिफ बन चुका है। फयाज हमीद की रिपोर्ट।
2: खुशक सवाली की वजह से जिले के कई इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। जो तफसीलात शहरबीन को मौसूल हो रही है उसके मुताबिक जिले के दर्जनों इलाकों में खेतों के लिए दरकार पानी के जखायर हर गुजरते दिन के साथ साथ खुशक हो रहे हैं, जिसके नतीजे में खासकर धान की पनीरी को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। हतमुला, मुगलपोरा, गुशी, परेनाज, परेपोरा और गुड़गांव से मिली खबरों के मुताबिक यहाँ के हजारों कनाल अराजी पर लगाई गई धान की पनीरी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। लोलाब के दर्जनों हिस्सों से भी ये इतलात मिल रही है कि धान की पनीरी पानी के इंतजार में सूख रही है। रामहाल से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ भी कई इलाके आबपाशी के पानी के लिए परेशान हाल है। हायामा इलाके के लोगों का कहना है कि इस हिस्से के कई खितों में धान की पनीरी पानी न मिलने के सबब घास का रुख इख्तियार कर गई है। कंडी, नतरूसा, कीगाम, कुलनगाम और राजवार से मिली खबरों के मुताबिक यहाँ भी धान की फसल कई हिस्सों में पानी न मिलने के सबब सूख रही है। लंगेट और हंडवाड़ा के कई दूर दराज इलाकों से जो जानकारी फराहम हो रही है उसके मुताबिक यहाँ भी धान की पनीरी, मकई और सब्जियों की क्यारियां पानी के इंतजार में वीरान पड़ी है। शहरबीन को बावसू जराए से मालूम हुआ है कि जिले में मौजूद आबपाशी के लिए बनाए गए वाटर रिजर्वेयर या सरबंद भी अब सूखने के करीब पहुंच चुके हैं, जिसके नतीजे में किसानों में तश्वीश बढ़ गई है। जहां एक तरफ किसान दिन रात अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तहां वहीं दूसरी तरफ यहाँ की आवाम बारिशों के लिए दुआएं मांगते भी नजर आ रहे हैं।
1: ये थे कुपवाड़ा से फयाज समीर। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी कि खासीपुरा त्राल के लोगों ने आज बिजली फीस में हद दर्जे इजाफे को लेकर एहतजाज किया और अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना था कि महकमा हर माह बिजली फीस में इजाफा करता है, इससे बेहतर है कि महकमा वहां मीटर ही नस्ब करे ताकि सार्फीन अपने हिसाब से बिजली का इस्तेमाल करें और उसी हिसाब से बिल भी अदा करें। सामिन, आज चौथे इमाम हजरत जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में चनबल मीरगुन पट्टन से आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी की क्यादत में हजारों आशकान ने जुलूस निकाला जो देर गई तक जारी रहा। ये जुलूस आज देर शाम मीरगुन पट्टन में इख्ताम पजीर हुआ, जहां इमरान रजा अंसारी ने वाज तबलीग फरमाया। वाज रहे कि ये शुमाली कश्मीर में मुहर्रमुल हराम की तकरीबात में सबसे बड़ी तकरीब मानी जाती है। काजीगुंड ब्लॉक के ठेकेदारों ने आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की फौरी तैनाती और तवील अरसे से जेरे इल्तवा मेटीरियल बिलों की अदायगी का मुतालबा किया। ठेकेदारों का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड जारी किए जाने के बावजूद मेटीरियल की अदायगी ताहल नहीं हुई है, जिसके बायस उन्हें सख्त मुश्किल का सामना है और तरक्याती काम भी मुतासर हो रहे हैं। मुजाहरीन ने कहा कि मुस्तकिल बीडीओ की अदम तैनाती के सबब मुतद्दिद इंतजामी और सरकारी मामलात इल्तवा का शिकार है, जिससे तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अदायगियों में रुकावटें पेश आ रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मेटेरियल की अदायगी फौरी तौर की जाए और काजीगंज ब्लाक में मुस्तकिल बीडीओ तैनात किया जाए ताकि कामकाज मामूल के मुताबिक जारी रह सके। शर्बीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही

0: इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेज का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बना।
2: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग ना हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
4: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले की इतला देते हैं। ख्वाहिशमंद तुलबा जो CUET UG 2026 में शामिल हुए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2026-27 से 4 साल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। दाखिले और मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर राबिता कायम करें।
5: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मुकदम। सामीन, मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहां के 26वें यौमे विसाल के मौके पर आज जम्मू कश्मीर में तकरीबात का एहतमाम रहा। सबसे बड़ी तकरीब मरहुमा के मकबरा नसीमबाग दरगाह मुनक्कद हुई, जहां बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों और लीडरान ने फातह खानी की मजालिस में शमूलियत की। मरहुमा के फर्जंद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मरहुमा के मकबरे पर गुलबारी की और फातह खानी की मजालिस में शमूलियत की, जिनकी मुनासबत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेरी कश्मीर भवन जम्मू किश्तवाड़ बानिहाल समेत दीगर मकामात पर भी तकरीबात का एहतमाम रहा। दिन की मुनासबत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज एक कन्वेंशन भी मुनक्कद हुआ, जिस दौरान उमर अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया कि उनकी जमात को तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नायकू से।
6: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हफ्ता को नसीम बाग हजरतबल श्रीनगर में मादर मेहरबान अकबर जहां अब्दुल्ला की 26वीं वर्षी के मौके पर एक बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी की आला क्यादत, वुजरा, अरकान पार्लियमान, अरकान असम्बली, राज्यसभा मेंबरान, पार्टी के ओहदेदारों और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए हजारों कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन और हामी नसीमबाग पहुंचना शुरू हो गए थे। कई कारकुनों ने जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर मबनी पोस्टर उठा रखे थे। तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, रुकन पार्लियमान निया अल्ताफ अहमद, काबीना वजरा सकीना यतू, जावेद अहमद डार, राज्यसभा के अरकान चौधरी मोहम्मद रमजान और शमी ओबराय समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान असेंबली भी तकरीब में शरीक हुए। तहम श्रीनगर से रुकन पार्लियमान आगा सईद रूहुल्ला मेहदी तकरीब में शरीक नहीं हुए। तकरीब के दौरान बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी सियासी, समाजी और अवामी खिदमात को याद किया गया। तकरीब से वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी, जावेद अहमद डार, सकीना येतू, अली मोहम्मद सागर, तनवीर सादिक, चौधरी मोहम्मद रमजान, फारूक शाह, नजीर अहमद गुरेजी और पार्टी के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने खिताब किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में ताखीर पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के अवाम के सब्र को कमजोरी या पसपाई नहीं समझा जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने तकरीबन 2 साल तक मरकज के साथ बातचीत के जरिए मसाइल हल करने और वादों की तकमील का इंतजार किया, लेकिन अब पार्टी रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को मजीद शिद्दत के साथ उठाने पर मजबूर हुई है। अपनी तकरीब के दौरान वजीर आला ने इल्जाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने और इनके अराकीन असेंबली को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है।
7: हम रियासत मांगते हैं और यही बीजेपी वाले जो लड़ाकू 370 मांग लेने के लिए तैयार है।

0: आ जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में आधारित सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
2: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहां काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुलवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
1: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: हालात हाजर का प्रोग्राम शहर भीन आपने सुना। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। समीन शाम के 7:30 होने वाले हैं। कश्मीरी उर्दू में खबरें सुनते हैं।

0: जबकि जम्मू कश्मीर में यूटी राज शुरू होने के साथ ही उनकी सरकार ने स्टार्टअप्स का दायरा यहां तक भी वसी किया, जिसकी बदौलत मुल्क के लाखों नौजवान अपने लिए जाती रोजगार कायम करने के अहल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता 6 बरसों से जायद अरसे से स्टार्टअप्स का ये खसूसी प्रोग्राम एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। कई नौजवानों ने मुख्तलिफ सन्नतों के साथ साथ ज़राअत, बागबानी, अद्वियात और फूलों की काश्त वगैरह के शोबों में कामयाब यूनिट कायम करके अपने साथ साथ दीगर नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए हैं। इस कामयाबी का सहरा सरकार की तरफ से बहम की गई माली व तकनीकी मदद के सर जाता है। सनअती शोबे को नई कुवत बख्शने के लिए सरकार ने जिस तरह के इकदाम किए हैं उनके भी काफी मुस्बत नतायज बरामद हो रहे हैं। इन इकदाम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज ही नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक्द हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के सनअती शोबे में जारी तरक्याती अमल का जायजा लिया गया। एपेक्स कमेटी के इस इजलास में 2021 में शुरू किए गए 28,400 करोड़ रुपए की जारी हुई मरकजी स्कीमों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इन स्कीमों के तहत अब तक कुल मिलाकर 971 यूनिट रजिस्टर हुए हैं और उम्मीद है कि इस मीटिंग में लिए जाने वाले ताज़ा फैसलों से सनअती शोबे को मजीद फरोग हासिल हो सकेगा। इसके साथ ही तबसरा खत्म हुआ। इजाजत दें, शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

सभी घर वालों ने पोस्ट कार्ड भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में नगमा। फिल्म का नाम है कातिलों के कातिल।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। दोस्तों, अब पेश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम है नौनिहाल, और सुनना चाहते हैं लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज ने मेल भेजा है। आपके साथ हैं बिट्टू बजाज और साहिल। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार और आपके सभी घरवाले। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार, वंदना, भूपेंद्र, जानवी, तनुश्री, आरोही और कान्हा ने पोस्ट कार्ड भेजा है, और ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। आप हैं ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। सुनिए अपनी पसंद।

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: को ले ले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा ने पोस्टकार्ड भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में नगमा फिल्म मजबूर से।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 साल लक्षण दाम मुफ्त इलाज हकदार वनिकताम चु 2 करोड़ इलाज सपुद यम सीत गरीब गरन इलाजस पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हंस बचत सपुद अस करियो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनायो आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करियो 1455555 फोन नंबर पे रबित कयम
1: नई पहचान।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन शोबे खबर की पेशकश जिलानामा सुनते हैं। आज का जिलानामा जिले बड़गाम से मुतल्लिक है।
3: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
4: जिलानामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिलानामा में हम वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के बीरवा सब डिवीजन में सड़क रवाबित के ताल्लुक से बात करेंगे। समीन दौरे जदीद में सड़क रवाबित मुल्कों और अकवाम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि सड़कें तरक्की की शहरग कहलाई जाती हैं। बड़गाम जिले के बीरवा इलाके में महकमे R&B बड़ी सरगर्मी के साथ सड़क रवाबित को बढ़ावा देने में मसरूफ अमल है और सब डिवीजन में इस वक्त 550 किलोमीटर सड़कों की देखरेख इस महकमे के जिम्मा है। बीरवा सब डिवीजन में सड़क रवाबित को बढ़ावा देने से मुतल्लिक हाल अहवाल जानने के लिए जब हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन सज्जाद हुसैन के साथ बात की तो उन्होंने कहा,
5: जहां तक ताल्लुक है बीरवा की रोड लेंथ थी वो मैं आपको बता दूं वो 550 किलोमीटर है टोटल। जो हमें लास्ट ईयर अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो चलती है हमारी उनमें CNT है, पोर्ट होल्स है, UT कैपेक्स बजट है, नबार्ड है, FC ग्रांट्स है। जो पिछले साल का टारगेट था हमें मैगडमाइजेशन का वो हमें था 38.91 किलोमीटर टारगेट था जिसमें हमने 34.55 किलोमीटर अचीव किया है, 90+% बनती है। इसी तरीके से जो डिफरेंट पुल भी यहाँ उन पे भी काम चल रहा है अंडर नबार्ड ब्रिज सेक्टर जिसमें 5 बड़े पुलों पे काम चल रहा है जिसमें एक लगभग मुकम्मल हुआ है, उसके अप्रोचेज में सिर्फ तारकुल बिछाना बाकी है। इसी तरीके से इस साल के आखिर तक मजीद 3 पुल मुकम्मल होने की तवक्का इंशाल्लाह है हमें।
6: तो कौन कौन सा पुल है ये जो इस साल आपका टारगेट है?
5: एक तो है तकियाबल कनगुंड, दूसरा है बीरवा मागाम रोड पर मैन ब्रिज बीरवा, तीसरा है बीरवा चिवडारा और चौथा जो लगभग मुकम्मल हुआ है 95% वो

0: वो है लाहौरी चक नौपोरा, वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, उनके अप्रोचेस में सिर्फ तारकोल बिछाना बाकी रह गया है।
1: तो कौन कौन सी स्कीमें हैं, चाहे वो यूटी सतह की हैं या सीएसएस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन कौन सी स्कीम है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं?
0: जी वो सीएनटी है, पोर्ट होल्स है, यूटी कैपेक्स बजट है, नबार्ड है, एफसी ग्रांट्स है, और इसी तरीके से इस साल हमने 40 किलोमीटर का टारगेट रखा है इस साल का, जो हम पूरी कोशिश करेंगे हम ये अचीव करें। बस दुआ करें कि पर्शियन गल्फ में अमन रहें, क्योंकि तारकोल हमें वहां से आता है, अमन अमान हो जाए वहां, ताकि हमारा जो टारगेट है इस साल का, इस पे हम अमली जामा पहना सके।
1: सज्जाद साहब, अक्सर लोगों का मानना होता है, लोगों की शिकायत रहती है कि एक साल महकमे ने काम किया, फिर दूसरे साल या तीसरे साल ही सड़क जो है वो गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ कम्प्रोमाइज मत होता है?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बाजाबता टेस्टिंग होती है। मैं लोगों से इस्तेदा करूं कि जब रोड बनाता है महकमा, तो हम वक्फ करते हैं इसको आवाम के लिए। मेरी गुजारिश है आवाम से कि ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, वो इसका ख्याल रखें ताकि ये ठीक रहे। इसमें कुछ ये भी आ रहे हैं, ब्रिक किल्न्स आ रहे हैं, वो बड़े बड़े डंपर ला रहे हैं, मिट्टी ला रहे हैं साथ, वो उन जगहों पर रोड खराब हो जाते हैं। मेरी लोगों से यही इस्तेदा है कि चूंकि प्रॉपर्टी आप लोगों की है, आपके लिए है, तो इसकी हिफाजत करना भी उनका अवलीन फर्ज है।
1: कुछ रोड्स और भी हैं जो मागा नाजन से कोल्हामा रोड है, वहां पे भी हमें कई शिकायतें आती हैं कि रोड खस्ता है, या मागा अमृतसना है, ओहनगाम है, वहां पे भी। कब तक आप लोगों को आश्वासन देंगे कि ये रोड सारी जो है वो क्लियर हो जाएंगे?
0: मैंने आपको पहले ही कहा, इस पिछले साल का टारगेट था हमें 48.91 किलोमीटर, जिसमें हमने 34.55 किया है। इस साल का टारगेट 40 किलोमीटर है, और रफ्ता रफ्ता हम कोशिश करेंगे हर एक रोड को ठीक करने की। हमारी स्कीम्स यही है, सीएनटी, पॉट होल्स, यूटी कैपेक्स बजट, नबार्ड, एफसी ग्रांट्स, यही स्कीम्स हैं जिनके तहत हम अपने रोड्स या पुल या तो तामीर करते हैं या उनको या उनकी मरम्मत करते हैं।
1: अपने एरिया के बारे में कुछ बताइए, चूंकि रूरल एरिया है, कितना कठिन है वहाँ पे सड़कों की तामीर करना?
0: हिली एरिया है, इट इज चैलेंजिंग, बट वी आर डिटरमाइंड, हम डिटरमाइंड है कि हम हर चैलेंज को फेस करेंगे।
1: आपको लगता है कि जहाँ पे भी गांव है, सड़क के किनारों पे बस्ती है, वहाँ पे ज्यादा रोड खराब हो जाते हैं, और आपकी क्या कोशिश रहती है कि हम लोगों को समझाने की कि आप रोड आपका है और आपको इस देखरेख आपको ही करनी है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सड़क जो बनाते हैं वो आवाम के नाम ही वक्फ करते हैं, और ये अवलीन फर्ज है आवाम का कि वो भी आप उस सड़क का की हिफाजत करें, पानी न डालें, कूड़ा करकट वो निकालते हैं घर से और फेंकते हैं सड़क पे। सिर्फ सेंस प्रिवेल होना चाहिए हमारे आवाम में।
1: क्या रवा माली साल का जो हमारा बजट है, उस हवाले से काम शुरू हुआ है?
0: जी जी, काम शुरू हो गया, सिर्फ मैकेडमाइजेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से कि पर्शियन गल्फ में इस वक्त वॉर चल रहा है। हम दुआ करेंगे कि अमन अमान हो।
1: अगर हालात ठीक रहे तो आप अपना टारगेट जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे।
0: इंशाल्लाह पूरा टारगेट हम अपना कवर करेंगे।
2: समीन, कौमों और मुल्कों की तरक्की में अवामी नुमाइंदों का रोल इंतहाई अहम होता है। अवाम के चुने हुए ये नुमाइंदे तरक्याती प्रोजेक्टों की तैयारी से लेकर इनकी अमलावरी तक हर सतह पर अपना किरदार अदा करते हैं। बीरवा इंतखाबी हलके के मेंबर असेंबली डॉक्टर शफी अहमद वानी ने हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह के साथ बात करते हुए बीरवा सब डिवीजन में सड़क रवाबित के ताल्लुक से तफसीलात कुछ यूं फराहम की।
3: तरक्की के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब से कि उमर साहब की हुकूमत बन गई और मैं यहाँ बीरवा का एमएलए बन गया, पीडब्ल्यूडी सेक्टर में हमने पिछले पौने दो सालों में बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले जो बीरवा का डिवीजन था, हमारे पास न एडब्ल्यू था न एक्शन था। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने एक काबिल मेहनती एडब्ल्यू पोस्ट किया और एक्शन भी पोस्ट किया, तो जो डिवीजन था वो एक्टिवाइज हो गया। इंशाल्लाह इस साल हमें ज्यादा मैकेडमाइजेशन और रोड कनेक्टिविटी करनी है। हमने लास्ट ईयर वो एरिया दिए जो इग्नोर हुए थे, जिनका क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है आर्डिना टू रसन, बिल्कुल पिछले 6 साल में कुछ नहीं हुआ, उसका हमने मैकेडमाइजेशन किया। एक गांव है वातलपोरा साइड, वहां हमने मैकेडमाइजेशन किया। महगाम टाउन और बीरवा टाउन प्रायोरिटी में हमने मैकेडमाइजेशन किया। नारबल ब्लॉक में हमने मैकेडमाइजेशन किया, और ऊपर के कुछ एरिया जैसे बनहमा वहां हमने मैकेडमाइजेशन किया। तो इस साल इंशाल्लाह अब हालात ठीक हो गए, जो पर्शियन ये गल्फ एरिया में फॉर्मेट खुलेगा, तो मैकेडम इस साल मेरे ख्याल में हम अगर मौसम ठीक रहा

0: और मैं ये टॉर अवेलेबल होगा। दीरवा में हम ऑलमोस्ट 65% रोड्स को अंडर CNT और पॉट होल्स में नगडम करेंगे। मैं एक चीज आपके जरिए लोगों से ये कहता हूँ कि वो डिपार्टमेंट से कॉपरेट करें, क्योंकि अगर सड़क बनानी है, सड़क के लिए हमें जमीन चाहिए। इंजीनियर तो हवा में सड़क नहीं बना सकता है। जहां पर भी मेरे लोगों को कुछ चीज उठाना होगा जाना, उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कॉपरेट करना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी तो मैं खुद मेंटेन कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। लोग भी वॉच, मैंने एक टीम बनाई है और जो इंजीनियर्स मेरे पास है इस वक्त, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, आई हैव अ वंडरफुल इंजीनियर जो मुझसे भी ज्यादा दे वांट अ क्वालिटी वर्क, उस मामले में मुतमईन हूँ। तो मैं एरिया में जाता हूँ जहाँ भी मेरी ड्यूटी है, मैं कोई ये लोगों को मिन्नत नहीं रखता हूँ। लोगों ने मुझे इसीलिए वोट दिया है और अल्लाह ने भी मुझे इस काम पर इसीलिए लगाया कि लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की वाबस्तगी है और अल्लाह की तरफ मेरे लिए इम्तिहान है। आप भी दुआ कीजिए कि इस इम्तिहान में मैं कामयाब और सुरख रहूं।
1: समीन, जब किसी भी इलाके में सड़क रवाबित में वुस्सत आ जाती है तो वहाँ के लोगों में भी तरक्की के रुझानात बढ़ जाते हैं। लोग सब्जियां, मेवे और दीगर जरी पैदावार बाजारों तक ले जाने में आसानी महसूस करते हैं और इसके नतीजे में इन लोगों को अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत भी मिल जाती है और यूं इनके घरों में खुशहाली आ जाती है। सड़क रवाबित ही हैं जो दूर दराज इलाके के लोगों की जानिब से उगाई जाने वाली सब्जियां, मेवे और दीगर अशियाए खुर्दनोश दूर दराज के बाजारों में पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह ने बीरवा हलके के कुछ आम लोगों से बात की और उन्होंने हुकूमत की जानिब से सड़क रवाबित को वुस्सत देने की खातिर किए जा रहे इकदामात की सराहना करते हुए कहा।
2: जो तामीरकारी है उसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है, बहुत सारी सड़कें, नई सड़कें तामीर की गई है और पुरानी सड़कों की भी वाइडनिंग हुई है, मगर इसमें अभी भी बहुत कमियां हमें लगती है। बहुत सारे जगहों पे काम करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में तालमेल का फुकदान है, जैसे कि PDD और R&B के दरमियान। इसी तरह जल शक्ति डिपार्टमेंट और R&B के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब भी सड़कों की वाइडनिंग होती है या सड़क बनाई जाती है तो उसके बाद ही या वहाँ जल शक्ति डिपार्टमेंट उसमें पाइपें बिछाता है सड़कों में, और उससे जो बुनियादी मकसद है सड़कों की तामीरकारी का वो फोत हो जाता है, वो पूरा नहीं होता है। उसके अलावा जो ये है PDD डिपार्टमेंट, ये भी वहाँ पे जो तरसीली लाइने नसब करते हैं, पोल वगैरह सड़कों के बीच नसब करते हैं, फिर उनका जो वाइडनिंग का बुनियादी मकसद ही खत्म हो जाता है। फिर लोगों को आमद रफ्त में बहुत सारी मुश्किल आते हैं, और अगर कभी फिर वाइडनिंग की जाती है तो उन लाइनों को हटाने के लिए फिर क्लेरिफिकेशन लानी पड़ती है डिपार्टमेंट से, वो नहीं मिलती है, तो बहुत सारी रुकावट उससे भी हो जाती है। तो लोगों को जो है इसमें आमद रफ्त में बहुत सारी मुश्किल पेश आती है। पहले तो मैगडम बिछाया जाता है और कुछ अरसे बाद ये आते हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट और उसको रोड को खोदते हैं और रोड के बीचों बीच पाइपें बिछाते हैं, फिर उसको ठीक नहीं किया जाता है। प्रॉब्लम है इसमें जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है कंट्रैक्टर का, वो उस पीरियड के दौरान जहां भी इसमें पैच होते हैं उनको रिपेयर नहीं करता है, तो लोगों को फिर जो है उबूर मरूर में बहुत ज्यादा दुश्वारियां आती है। तो इन चीजों पे हम चाहेंगे कि अगर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होती या डिपार्टमेंट टाइमली ये चीजें पहले कंप्लीट करती फिर रोड पे मॉडर्नाइजेशन या वाइडनिंग की जाती, वो बेहतर रहता, ताकि ये लोगों का जो है पैसा है, टैक्स का पैसा जो सड़कों पर खर्च किया जाता है, तो ये पैसा भी बच जाता और सही तरह से ये इस्तेमाल हो सके।
3: मेरा नाम रियाज अहमद है और मेरा ताल्लुक बीरो बड़गाम से है। जहाँ तक सड़कों के हवाले से बात है तो हम ये कहना चाहते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से अच्छा काम हुआ है सड़कों की तामीर के हवाले से, लेकिन अभी भी काम की बहुत गुंजाइश है। दूर दराज इलाकों में अगर देखा जाए सड़कें खस्ता नजर आ रहे हैं, जिन पर महकमे को खास तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इलाके की तरक्की सड़क रातों से ही जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि क्वालिटी मटेरियल पे तवज्जो दी जाए।
1: इसके साथ ही जलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशिकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लोन, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
4: समीन शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम जिला नामा आप सुन रहे थे। आज का जिला नामा जिले बड़गाम से मुतालिक था।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय

0: समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237142 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक

महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन

0: स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित

0: राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय रात के 9 बज चुके हैं। चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में सुनते हैं स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें।

फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। अब आखिर पे सुनते हैं लोफर फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में।

से 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे जिनमें 32 भारतीय सयाह, अमले के 3 अफराद और 1 अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासरा कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं, +84 36 210 7930, +84 91 552 7314 और +84 33 452 0414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +84 91 308 9165। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू क्वॉक जजीरे के नजदीक कश्ती के अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजोगम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में सभी जख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भारतीय सिफारतखाना और कौंसल खाना सभी जरूरी मदद फराहम कर रहा है और वियतनाम के ओहदेदारों के साथ करीबी राबते में है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत के लिए यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में इस महीने की 2 तारीख को काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय एक फितरी अम्र है लेकिन आईन और अवामी बहबूद के तई अहद मुकदम रहना चाहिए। गया जी में बिहार कानूनसाज असम्बली के अरकान के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदही को अव्वलीन तरजीह दें। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने एक फर्द की शख्सियत निखारने में लाइब्रेरियों के नुमाया रोल को उजागर करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो लाइब्रेरियों के साथ मुंसलिक हों। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी, मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके आवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामिया मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा

कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाजाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संग मील हासिल कर लिया है। मजकूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बाबंद करने की सनतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगे मील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोग के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेरे कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का कर्नाटक के मैसूरू में इंतकाल हो गया। वो 88 साल की थीं, वो ज़ईफ़ुल उम्री से वाबस्ता बीमारियों में मुब्तला थीं। एस जानकी ने 60 साल से ज़्यादा के अपने करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 48,000 नगमे गाए, इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी ज़बान शामिल हैं। एस जानकी को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था, उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा उन्हें 33 स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया।

0: पिछले 5 सालों में उस काम को एग्जामिन किया गया है, चाहे हम टीचर की टीचिंग की बात करेंगे, चाहे हम रिसर्च की बात करेंगे, चाहे हम जो हमारे एक्टिविटीज़ रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी के बारे में उनसे उनकी बात करेंगे, तो फाइनली जो हमारे रैंकिंग्स आ गई है सो उस हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। और मज़ीद जो हमारी अब यूनिवर्सिटी की जो ये जो है कोशिशें हैं, हमने तो A++ तो हमने मार्क किया है, लेकिन उसके जैसे आपने सही बता दिया उसके हिसाब के साथ में ही ना एक और रिस्पांसिबिलिटीज आ गए हैं। अब हमें आपने आपको प्रूव करना है, अब वो भी हमें कहाँ पे प्रूव करना होगा, वी विल हैव टू प्रूव अवर सेल्व्स एट द इंटरनेशनल लेवल। सो वी विल नाउ मूव फ्रॉम नेशनल लेवल टू द ग्लोबल रैंकिंग। हम अब चाहेंगे जो ग्लोबल लेवल पे जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है कहीं ना कहीं एक दिन हमारा नाम भी उसमें जाए, लेकिन उसके साथ साथ देयर आर चैलेंजेस। तो जैसे मैंने बता दिया, चाहे टीचिंग लेवल पे, चाहे रिसर्च लेवल पे, चाहे स्टूडेंट लेवल पे, चाहे एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज में बहुत डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स को उनमें हमें बहुत मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें A++ मिला तो अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज सोसाइटी जो हम पे नज़र रख रही है, सोसाइटी जो हमें देख रही है, दे विल एग्जामिन अस। देखिए, इट्स नॉट दैट कि हमें एग्जामिन कर रहे हैं बाय आवर नैक कमिटीज या UGC या जो भी कुछ है, सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सोसाइटी हमें किस नज़र से देख रही है, जो पब्लिक का जो एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे बच्चे हैं जहाँ से भी आते हैं, चाहे स्टेट UT लेवल से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक नज़र रहती है कि हमारे बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं। उस हिसाब से यूनिवर्सिटी की रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बोथ इन टीचिंग एज वेल एज ए रिसर्च एंड इन ऑल अदर एक्टिविटीज़। तो कुछ कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, किसी चीज़ को हाथ में लेने के लिए, किसी चीज़ को टारगेट को टच करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत के लिए आपको एक कोशिश होनी चाहिए। तो वी आर वेरी कमिटेड दैट वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट, एंड मुझे पूरा यकीन है नॉट ओनली एज अ रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी बट एक अदना के हिसाब से मैं भी यूनिवर्सिटी को जैसे देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए प्रोफेसर ऑफ दिस वन ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रही है। और उसमें मैं आपको बताऊँगा, जो हमारी जो गवर्नमेंट है तो अच्छा बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो हमारी फंडिंग एजेंसी से बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट एंड टच द स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल।
1: सर, जैसा कि आपने फरमाया कि जो अवामी तवक्कात हैं उन तवक्कात को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की होंगी अब जिससे उन तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश की जा रही होगी। तो अब बात को थोड़ा तफसील और करते हैं सर, और मुख्तलिफ गोशों को देखने की कोशिश करते हैं, तहकीक का मामला हो, फिर तदरीस का मामला हो, या इनोवेशंस का मामला हो। तो सर, आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले तो हम तदरीस के हवाले, सर क्या कुछ हो रहा है तदरीस के हवाले से, क्या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, कुछ नए ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं?
0: श्योर
1: उस हवाले से सर।
0: देखिए, पिछले 1-2 सालों से जहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए पहले आपको देखना है कि क्या चैलेंज है अभी ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे जब हम देख रहे हैं एक जो हमारा आजकल जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, सो ये एक नई चीज़ तो नहीं है बट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके बगैर शायद आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो उस लिहाज से यूनिवर्सिटी ने बहुत आगे कुछ स्टेप्स लिए हैं, हमने इन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है। सो जैसे मैं आपको बताऊंगा, AI कोर्स हमारे पास है, डेटा साइंस हमारे पास है, साइबर सिक्योरिटी हमारे पास है। सो इनफैक्ट जो भी हमारे नए कोर्सेज हैं उनमें हमने AI को एक कंपोनेंट रखा है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, हमारे जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ जो हमारे MOUs हुए हैं, इसमें मैं जैसे इंटेल की बात में बताऊँगा, बिकॉज इंटेल के साथ हमारा जो एक MOU हुआ है 2 साल पहले, इसलिए हुआ है बिकॉज दे विल ट्रेन अवर फैकल्टी, दे विल ट्रेन अवर ह्यूमन रिसोर्स फॉर दिस AI। तो अभी मैं रिसेंटली आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट रिसेंटली हमने कॉलेज प्रिंसिपल्स को इन्वाइट किया हायर एजुकेशन से, उनको एक AI की जो एक ट्रेनिंग दी, बिकॉज इट्स नॉट दैट वी हैव टू डू एवरीथिंग इन द यूनिवर्सिटी लेवल, इट हैज़ टू गो टू द कॉलेज लेवल, सब्सिक्वेंटली इट हैज़ टू गो टू द डाउन द लेवल टू द स्कूल लेवल, बिकॉज आपको देखना है आपका जो भी आपका सोर्स आता कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम द स्कूल्स। जब आपके स्कूल्स स्ट्रांग होंगे, जब आपके स्कूल्स इक्विप्ड होंगे firmly with all these tools, chahe AI ML ki baat karte hain, then it will go to the colleges and then to the universities. To hame teh tak jana hai. Us lihaz se university ne bahut zyada aage wo jo steps liye hain.

0: आपने उन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है, उसके अलावा इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ दैट ओनली कि हमारे पास एआई एमएल है, नो, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर अदर चैलेंजेस। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आजकल मैं यूटी लेवल की बात करूंगा, मैं कंट्री लेवल की बात करूंगा, मैं भी बिकॉज वी आर इन द फील्ड, हम बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं। जब मैं किसी बच्चे से बोलता हूँ, बेटा व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू नाउ, अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपका क्या लग रहा है, कहा कि सर मैं तो मास्टर्स कर रहा हूँ बट आई एम ट्राइंग माई ड्रीम इज टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, टू बी एन आईएएस ऑफिसर। सो उन चीज़ों को देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो भी हमने रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो है फिलासफी है, फिलासफी हमने पिछले दो सालों से इंट्रोड्यूस किया है। ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया है, एंथ्रोपोलॉजी हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, एक और एक बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टार्ट किया है, हमने इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। चाहे हम ये जो है मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे, चाहे हम जियोलॉजी की बात करेंगे, चाहे हम होम साइंस की बात करेंगे, चाहे हम लिंग्विस्टिक्स की बात करेंगे, लैंग्वेजेस की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। सो इन डिपार्टमेंट्स में वी हैव स्टार्टेड विद द इंटीग्रेटेड। सो बच्चों को पहले ही पता चलना चाहिए, ऑफकोर्स देयर इज ए कॉम्पिटिशन, एग्जाम्स है, हूएवर क्वालिफाइज विल गेट द एडमिशन। इनफैक्ट हमारा जो आजकल एडमिशन प्रोसेस है इट इज गोइंग ऑन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो बच्चे हैं उनके पास एक इंटरेस्टेड माहौल फ्रॉम द बिगनिंग रहेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बच्चे को मेंटरिंग करनी है, मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है ये जो स्टूडेंट है, नॉट एज टीचर आई विल ओनली टीच हिम माई सिलेबस और मैं बताऊंगा मेरा काम नहीं हुआ है, आई हैव टू एक्ट एज अ मेंटर। मुझे देखना है ये जो बच्चा कंप्लीट कर रहा है, मेरा हक बनता है मैं उसको बताऊंगा बेटा अभी आपका प्लान क्या है। अगर मैं मुझे लगेगा हिज प्लान्स आर वेरी डिवेटेड, आई हैव एवरी राइट एज अ टीचर एज द गार्डियन टू गाइड हिम इन सच ए वे सो दैट ही कैन चूज द राइट टारगेट। सो जो आपने जैसे आपने बता दिया यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में क्या क्या बहुत चीजें हमने की हैं, कुछ चीजें हुई है, कुछ चीज इन द पाइपलाइन पे चल रहा है।
1: अब हमारी NAP 2020 आ चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी के हवाले से तो पता भी है हमें किसी हद तक कि नहीं बहुत जोर है इस पर। लेकिन सर जितना आप हमारे सामईन को आगाह कर सकते हैं इस हवाले से कि कश्मीर यूनिवर्सिटी पहले तो NAP के हवाले से फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से
2: मैं आपको बताऊंगा। NEP विच मीन्स ए नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है, ये 2020 से हमारे पास एक रोड मैप है, अब तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया,
1: माशाल्लाह।
2: एंड दिस ईयर नाउ वी विल बी गेटिंग द स्टूडेंट्स विद द NEP लाइन,
1: ग्रेट,
2: बिकॉज इट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन द कॉलेजेस। मैं आपको बताऊंगा NEP क्या है। बेसिकली NEP है आपका एक मल्टी डायमेंशनल फ्रीडम अप्रोच है। मतलब अभी इससे पहले क्या होता था, इससे पहले यह होता था फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ए फिजिक्स स्टूडेंट आई हैव टू डू ओनली फिजिक्स, मैं रिसर्च भी करूंगा फिजिक्स में ही, फिजिक्स के बाहर मैं डोमेन में नहीं जाऊंगा। अब NEP का बहुत एक बड़ा वास्ता है, इफ आई एम ए फिजिक्स स्टूडेंट बट आई हैव सम अदर इंटरेस्ट, मुझे और भी कोई इंटरेस्ट है, मैं बायोफिजिक्स में जाना चाहता हूँ, मैं कहीं मैथमेटिक्स में जाना चाहता हूँ, सो NEP वो मुझे इजाजत देते हैं कि मैं इन क्रेडिट्स को कैसे हासिल करके उसमें जाऊंगा। सो इट इज ए मल्टी डायमेंशनल फ्रीडम अप्रोच फॉर नंबर वन। नंबर सेकंड, आपने जब आप कोई बच्चा जब दाखिल लेता था इससे पहले ही वॉज बाउंड टू बी इन द कॉलेज और इन द यूनिवर्सिटी फॉर दिस पीरियड, उसके बाद नहीं निकल, तब तक नहीं, बिकॉज हम बोलते थे भाई आपने ब्रेक ली है, आपने शॉर्टेज ली, आपकी शॉर्टेज आपके NEP ने आपने एक फ्रीडम दे दी है, यू हैव टू कम्प्लीट दिस क्रेडिट्स, आप ले लीजिएगा, उसके बाद एग्जिट ऑप्शन ले लो, एग्जिट ऑप्शन के बाद आप ये क्रेडिट उसके बाद आप करो। सो देखिए जब आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे, वहाँ पर हमने देखा है, स्टूडेंट से सुना है, खुद भी देखा है, दैट जो वहाँ का स्टूडेंट होता है वो कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टडी करने के साथ साथ वो एक कोई जॉब भी करता है, सो दैट ही बिकम्स एन ही रिमेंस एन इंडिपेंडेंट, वो अपने पेरेंट्स के खर्चे पे नहीं रहता, ही वांट्स टू बिकम वेरी इंडिपेंडेंट। NEP का वही है, आप ये भी करोगे और आप कुछ मल्टी डायमेंशनल और भी कुछ कर सकते हैं, आप स्किल्ड कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स के साथ साथ मैंने कोई स्किल्ड कोर्स लिया और स्किल्ड कोर्स को मैंने क्वालिफाई करके मुझे कहीं पार्ट टाइम जॉब भी मिला, तो मैं ये करूंगा, मेरा खर्चा भी मिलेगा, मैं वो भी करूंगा। सो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल फ्रीडम अप्रोच, एग्जिट ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, आप जितने आपको क्वालिफाई करने आप उतना ही करेंगे, इट इज ए मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, यू कैन चूज एनी फ्रॉम योर बास्केट आपके इंटरेस्ट के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूंगा, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी ने, बल्कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने भी पिछले कहीं एक दो सालों से वी हैव स्टार्टेड वन कोर्स, उसका नाम ही है DYOD, डिजाइन योर ओन डिग्री। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या है, 10 प्लस

0: टू के बाद जब वो बच्चा वो डीवाईडी के लिए जा रहा है, क्योंकि 4 साल का है, 2 साल के लिए उसको जो क्रेडिट्स क्वालिफाई करना है, पास करना है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिक्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, इट इज बेस्ड ऑन ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है आजकल, सो वी कैन टेक ए कोर्स ऑन द सोसाइटियल प्रॉब्लम्स. देयर इज एन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वी कैन टेक ए कोर्स क्रेडिट ऑन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. बेसिकली जो आइडियाज आ रहे हैं बच्चों के पास, तो बहुत सारे एक्सलेंट आइडियाज है. अभी इससे पहले क्या होता था, योर आइडियाज गेट फ्लोटेड इन द फ्री स्पेस, कहीं नजर में नहीं आ रहे. लेकिन अगर आपके पास आइडिया है, मैं सर से बात करूंगा, 2-4 स्टूडेंट्स को मिलकर हम एक ये वाला कोर्स लेंगे, इस कोर्स में मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा और इससे हमें और कोई सपोर्ट मिलेगा. सो दैट इज वॉट वी डू इन DYOD. सो DYOD इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, इट इज एक ऑफशूट पार्ट ऑफ दिस NEP. सो NEP का एक ही डोमेन नहीं है, इट इज ए मल्टी डायमेंशनल डोमेन. और एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए आजकल UT लेवल पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं नेशनल लेवल की बात करूंगा, मैं ग्लोबल लेवल की बात करूंगा. हम बोलते हैं लिमिटेड जॉब्स है गवर्नमेंट के पास, विच इज फैक्ट. सो वी वॉन्ट टू, देखिए जॉब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. अब वो जमाना गया, कोई बोलेगा मैं घर में बैठूंगा तो माय फादर और माय ब्रदर विल सपोर्ट मी, दो डेज आर ओवर, वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये चीज है कि आपने अपने आप को कितना काबिल बनाया है अपने सब्जेक्ट में, साथ के साथ जो आपके स्किल्ड है. इफ यू आर ए फोटोग्राफर, वाई विल नॉट बी सो मच प्रोफेशनल इन यूर फोटोग्राफी दैट यू कैन वर्क एनीवेयर, आप घर में नहीं बैठोगे.
1: तो ऐसे कोर्स जैसे आप फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, कुछ और क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इस जिम्मे में, इस लाइन में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं? अगर हैं तो उनसे जरा हमारी वो
0: बहुत सारे इनिशिएटिव्स उसके लिए. तो इनफैक्ट हमारे पास एक डायरेक्टरेट है इसके लिए, जिसका हमने नाम दिया है डायरेक्टरेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. उसमें हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू गेट ट्रेनड इन लुकिंग फॉर द इश्यूज ऑफ द रेफ्रिजरेटर. आप एक, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए गुड कुक and work in the 5-star hotel, we can train that is a skilling. If you want to become a good electrician, we can train him. If you want to become a good you can say that any entrepreneur, we can train him. So innovation and entrepreneurship, these things come from that directorate. Aur main aapko bataunga, not in hundreds but in thousands the student had get trained as on now. And ab ye hai, dekhiye donna to aapko hai, कोई आपको नहीं आएगा भाई देने के लिए. अगर आपने कोई चीज किया, देन यू हैव टू वर्क आउट मुझे कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे जाना है. नंबर वन, नंबर सेकंड, बिकॉज ऑडियंस विल बी लिसनिंग अस थ्रू दिस मीडियम. आई वांट टू कन्वे माय यंगस्टर्स, माय स्टूडेंट्स, माय एनीवन एल्स दैट के जब तक ना आप ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं. आप ढूंढो 100% आपको मिलेगा, घर में बैठ के आपको नहीं मिलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: सर अभी आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, आप फरमा रहे थे कि अब पॉसिबल नहीं है कि बच्चा अब कुछ ना कमाए और वो तालीम चलती रहे.
0: सही बात.
1: तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सर ये है कि हम बाहर की यूनिवर्सिटी में देखते हैं एक ट्रेंड है वहां पर, वो प्लेसमेंट्स के नाम पर, कैंपस प्लेसमेंट जो होती है. सर उस ज़मन में क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो उस चीज को लुक आफ्टर करती हो?
0: वी हैव अ सेंटर जिसका हमने नाम ही दिया है CCPC, सेंटर फॉर कैरियर प्लेसमेंट्स काउंसलिंग.
1: ओके सर,
0: प्लेसमेंट्स का हमने नाम रखा है सर. हमारे पास बहुत सारे कंपनीज आते हैं एट नेशनल लेवल, इवन एट इंटरनेशनल लेवल वी गेट मेल्स फ्रॉम देम. लास्ट ईयर ही बहुत सारे प्लेसमेंट हो गई हमारे बच्चों की. मैं आपको ये बताऊंगा, हमारा एक नर्सिंग कॉलेज है, इट इज इन साउथ कैंप्स. तो सऊदी अरब से एक प्लेसमेंट आई थी, दे वांटेड टू हायर सम दीज फीमेल नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ. आपको पता है एक दिन प्लेसमेंट करने के दे सिलेक्टेड 80 पीपल,
1: माशाल्लाह,
0: विद एवरी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग एल्स, एंड दे वेंट. अब जरूरी है, देखिए मैंने पहले भी बता दिया, अगर बच्चे को फ्यूचर देखना है, ही हैज कम आउट फ्रॉम हिज होम.
1: सही बात.
0: घर में नहीं मिलेगा, गांव में नहीं, अपने गांव में नहीं मिलेगा, अपने तहसील में नहीं मिलेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मिलेगा, इवन अपने शहर में भी नहीं मिलेगा, अपने यूटी में भी नहीं मिलेगा. अगर आप आगे जाना चाहते हैं, यू सर्च फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इन योर विलेज. सो ریپلیسمنٹس از اے پارٹ آف اور کنٹینیو پروسیس, وہ چل رہا ہے. مینجمنٹ سے ہمارے بہت سارے پلیسمنٹس ہو گئے, نرسنگ سے بہت سارے پلیسمنٹس ہو گئے, انجینئرنگ سے بہت سارے پلیسمنٹس ہے, اور ہم نے اس سینٹر کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک پروفیسر ڈائریکٹر رکھا.

0: और मैं इसमें चूंकि वो इसमें अभी आपने टच नहीं किया है, हमने पिछले मोर देन एन ईयर से हमने एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जिसको बोलते हैं आरसीए,
1: उस पे सर थोड़ी सी हमें कुछ रोशनी,
0: मैं आपको बताऊंगा। आप अक्सर देखते होंगे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या जे एन यू टाइप यूनिवर्सिटी या बाकी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, वहां पे दे ट्रेन दीज यंगर जनरेशन हाउ टू क्वालिफाई द सिविल सर्विस एग्जाम्स। अब उन्होंने नाम दिया है रेजिडेंशियल कोचिंग, ये रेजिडेंशियल रहता है, दैट मीन बच्चे को घर जाने की जरूरत नहीं है, वो शाम भी पढ़े, दिन भी पढ़े, रात को पढ़े, जो भी कुछ है। सो विद द सपोर्ट ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड एवरीवन एल्स, एवरी इंडिविजुअल, दैट हमने एक आरसीए एस्टेब्लिश किया है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और मैं आपको बताऊंगा चूंकि पहले साल था, लास्ट ईयर 60 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड बिकॉज वी डू सम एग्जाम्स फॉर दैट। और इम्पॉर्टेंट बात है कि देर इज नो फी, नथिंग एट, इट इज फ्री कोर्स। और एक चीज मैं अच्छी बात बताऊंगा, वी हैव प्रोवाइड देम द फ्री अकोमोडेशन इन वन ऑफ ए ब्यूटिफुल हॉस्टल ऑफ द कैंपस। अच्छा, 45 अपियर हुए थे इन द जो ये कंबाइंड एग्जाम होता है हमारे के एस का, जे के एस का, 38 हैव क्वालिफाइड,
1: माशाल्लाह।
0: सो आउट ऑफ 45, 38 हैव क्वालिफाइड।
1: बिल्कुल सर,
0: दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू,
1: माशाल्लाह सर, ग्रेट इनिशिएटिव सर। प्लेसमेंट्स की बात हो गई, इनोवेशंस की बात हो गई, अब पहले तो मुबारकबाद आपको देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है उसका, तो वो तो सर एक कोर्स है, उसके साथ उस कोर्स के हवाले से भी सर, और उस जैसे जो दूसरे कोर्स हैं, तो उस हवाले से जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या होने वाले हैं, कुछ रहनुमाई सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए।
0: मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी हैज कम फॉरवर्ड ऑलरेडी, हमने बच्चे के लिए 10+2 बच्चों के लिए एक इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट किया है। पहला बैच हमने लास्ट ईयर ले लिया है स्टूडेंट्स का, एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। तो 5 साल का उनका कोर्स है, दैट मीन्स देखिए दो चीज़ें होंगी, एक तो उनकी वो जो ग्रूमिंग होगी, 10+2 का बच्चा छोटा ही होता है, लेकिन अभी उसको यूनिवर्सिटी में ला के एक प्लेटफॉर्म पे हमने उसको दे दिया है, भाई आपको 5 साल ये कोर्स करना है, आफ्टर दैट बच्चे की मर्जी है, वो प्लेसमेंट चाहेगा, बिकॉज डेटा साइंस में प्लेसमेंट्स की कमी नहीं है, वो प्लेसमेंट चाहेगा, वो आगे जाना चाहता है, वो कंट्री में कहीं जगह रहना चाहता है, वो यूरोप वेस्ट में जाना चाहते हैं, बच्चे की मर्जी है, दैट्स वन। सेकंड थिंग इज दैट वी हैव अ डेडिकेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, आपने सुना होगा, जिसको हमने नाम दिया है IoT, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जुकरा कैंप्स, हमारा वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वी हैव इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सब है। अच्छा, इस साल से ही हम वहाँ डेटा साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नॉर्थ कैंपस में ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस है, हम डेटा साइंस वहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हमने अब मैन कैंपस तक ही महदूद नहीं रखा है, वी हैव गॉन आउट ऑफ द मैन कैंप्स, जो हमारी जो सैटेलाइट कैंपसेस है हमने वहाँ भी स्टार्ट किया। दीज आर सम न्यू कोर्सेज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा स्टूडेंट सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना चाहता है, उसके लिए ही ऑलवेज, आपने अगर आप इसकी एनालिसिस करोगे, दे विल ऑलवेज प्रेफर टू टेक दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट। हमने उनके लिए एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, एंड इट इज फ्लडेड, देयर इज नो एनी वैकेंसी, और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, ये जो है उसके अलावा फिलासफी हमारे पास नहीं था, फिलासफी भी हमने स्टार्ट किया है। सो दीज आर सम न्यू डिपार्टमेंट्स विच हैव ऑलरेडी लाइनड अप। और मैं आपको इस स्टेज पे ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारा कुफवारा कैंपस है, कुफवारा कैंपस इज वन ऑफ द दिस सैटेलाइट कैंपस, अभी हमने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की, हमने ये भी देखा कि जॉब्स के लिए आजकल दिस पैरामेडिकल्स में बहुत सारे जॉब्स है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फुल फ्लेज्ड नर्सिंग कॉलेज इन द कुफवारा कैंपस।
1: माशाल्लाह बहुत सर खुशाइन खबरें जो हमें मिल रही हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश रहती नहीं है, कभी इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह सर कि बहुत जल्दी हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे
0: इंशाल्लाह,
1: ताकि हमारी रहनुमाई इसी तरह होती रहे। बस सर आखिर में आपसे ये इस्तदा करना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर कोई पैगाम आप दें।
0: बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है, मैं यहाँ नहीं और हर एक जगह बोलता हूँ, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब इंसान स्टूडेंट ए से निकल जाते हैं ना, उस वक्त आप अपने टाइम की कदर करते हो, लेकिन तब टाइम आपके पास नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, जो जो इस प्रोग्राम इसको सुन रहा है, प्लीज टेक टू मच केयर ऑफ योर टाइम, बिकॉज टाइम इज स्प्रेडिंग फास्ट, टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट, आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा। वर्क हार्ड फॉर कपल ऑफ ईयर्स, देन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ throughout your whole till you are alive in this world, and try to look for a bigger dream. My appeal to my students is try to look for a

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीडिया।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमारी नशरात एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। समीन, शब के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो

0: सदस्य न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय शब के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले कल यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों पर एक नज़र डालते हैं।

65 प्रोग्राम रेडियो साथी आप सुनेंगे सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम होनहार नशर होगा। मुश्ताक खाने का लिखा हुआ कश्मीरी ड्रामा हारी उठ कर आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर सूफी शायर जोहर पर एक जिंदगी और कलाम पर मबनी प्रोग्राम आप सुनेंगे। पेशकश गुलाम रसूल आखून। चंद उर्दू गजलें आप समाप्त करेंगे दिन के 12 बजकर 10 मिनट पर और 12 बजकर 40 मिनट पर कश्मीरी गजलें आप सुनेंगे। सभी मगरबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो ब्रॉडकास्ट होगा दिन के 1 बजकर 10 मिनट पर। दिन के 2:30 बजे प्रोग्राम समाप्त करें नई मंजिलें। सपहर 3 बजे फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम नशर होगा। पहाड़ी प्रोग्राम का वक्त रहेगा 4 बजे। 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम और शाम 5 बजे गोजरी प्रोग्राम नशर होता है। गनी भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं शाम 6:05 पर।

समीन हालात हजरा का प्रोग्राम शहर में नशर होता है हर रोज शाम 7 बजे, रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त करें वादी की आवाज। चंद फिल्मी नगमे आप सुनेंगे रात 8:30 पर और रात 9 बजे। तो समीन ये थी तफसील कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों की। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शब के 11:14 और 55 सेकंड हुए हैं। आज के मजलिस यहीं पे बर्खास्त करने की दीजिए इजाजत। सुबह मामूल के प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह 6:28 पर फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।